ठहरते वाले साईं बाबा सुनने वालों, आपके लिए पेश किया गया है फिल्म का नाम, जी हाँ, अमर अकबर एंथनी। फिल्म का नाम है नेखंतिन सेफन सेफन तक है, पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। सोच रही हूँ उसी फिल्म से एक और सुंदर गीत आपके लिए चला दूँ।

सैफ अली प्यार के दुश्मन, हाय हाय, वही मशहूर फिल्म, जी हाँ, जहाँ से हम उन दिनों में बहुत मशहूर हुआ करते थे। ये फिल्म के नाम जिक्र तो चारों ओर हुआ करते थे, और वही फिल्म है जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी, जी हाँ।

कहते हैं कि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। फिल्म ताजमहल से लता और मोहम्मद रफी जी।

जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के लिए यहाँ से चलाया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जहाँ जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है।

बस प्यार ही करते रहना और क्या करे, प्यार करते रहना और निभाते रहना। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे को समय देने में उतना ही उतना

और एक बात ये भी जरूर से याद रखना, हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ आपको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। ये मेरे लिए भी लागू है, जी हाँ मेरे लिए भी लागू है कि जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ हम सबको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आते हैं।

दिल में बंद कर दूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। आपको कितने लोग पहचानते हैं, आपको कितने लोग पहचानते हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से आपको पहचानते हैं ये मायने रखते हैं।

तेने दत्ताई तो सॉन्ग उसी फिल्म के, और हम आपसे क्या कहे, आपको हम लेकर चलते हैं फिल्म लवारिस की ओर। पर गीत चलाने से पहले ये जरूर कहूंगी कि एक सवाल है। आदमी कहता है पति को गुस्सा आता है तो वो पत्नी पर हाथ उठाता है, आदमी को गुस्सा आता है तो वो पत्नी पर हाथ उठाता है, लेकिन हाथ पत्नी पर क्यों? क्यों सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाता है, अपने माता अपने पिता भाई बहन पर क्यों नहीं? ये एक सवाल है, जरा आप भी पूछो अपने आप से। फिल्म लवारिस से हम ये सुंदर गीत आपके लिए चला देती हूँ।

गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है। फिल्म लवारिस में से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आप ही के लिए पेश किया गया है सुनने वालों। मदद एक ऐसा घटना है, मदद एक ऐसा घटना है, करे तो लोग भूल जाए, करे तो लोग भूल जाता है और ना करे तो लोग याद रखते हैं।

याद आ रहा है तेरा प्यार, वही फिल्म। ओहो, फिल्म डिस्को डांसर से निकाला गया। सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत, और ये गीत आपके लिए मैं यहाँ से भी चला देती हूँ। ये भी एक सुंदर सा गीत है, जरूर हम यहाँ से मिलकर सुने। और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबा पर भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं कि हर समय जुबा पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए।

तक रहे तन में जिया। सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम यहाँ पर सुनेंगे आशा भोसले जी के आवाज में। कहती हूँ कि हाथ की लकीर भी कितने अजीब है, हाथों की लकीरें कितने भी अजीब है। मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं।

तुम्हारे लिए और आप हमारे लिए है ना। एक अच्छा बात यहाँ है वो है कि मैं तुमसे एक दिन कम जीना चाहती हूँ, मैं तुमसे एक दिन कम जीना चाहती हूँ ताकि मुझे कभी तुम्हारा कभी ताकि मुझे कभी तुम्हारे बिना जीना ना पड़े।

डिस्को दीवाने नाजिया हसन की आवाज़ में यहाँ से हमने सुने सुनवाल। और देखे तो जीवन के दिन ये बहुत अच्छे है, लम्हा भी है, बढ़िया है सब कुछ। मैं तुमसे हाँ ये तो हमने आपसे सुना दी है। दूर रहते हैं मगर दिल से दुआ करते हैं, दूर रहते हैं मगर दिल से दुआ करते हैं हम। दोस्ती का फर्ज घर बैठे अदा करते हैं हम। आपकी याद सदा साथ रहते हैं, आपके याद सदा साथ रहते हैं। हर पल आपको हम याद करते हैं।

सोचे जो हम मतवाले। टाइटल सॉन्ग आपने सुने, सुने वालों कहते हैं कि जैसे खुशी के आंसू होते हैं, जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही गम की भी हंसी होते हैं। अपना घर अपना ही होता है, अपना घर अपना ही होता है, चाहे चाहे महल हो या झोपड़ी।

किशोरदा और लता जी की आवाज़ में यहाँ से ये सुंदर गीत चला दिया गया है। लाख मजबूरी हो अपने माँ बाप को साथ कभी मत छोड़ना, अगर धरती पर स्वर्ग देखना हो तो अपने माँ बाप का कभी दिल मत तोड़ना। मोहब्बत करना माँ से सीखो और सब्र करना बाप से सीखो।

ये वादा से निकाला गया है। किशोर और आशा भोसले जी ने ये सुंदर सा गीत निहाम को सुना दी है। कहते हैं कि अपने पापा को भी थोड़ा समझ लिया करो, अपने पापा को भी थोड़ा समझ लिया करो। बाप की आखिरी उम्मीद उसके बच्चे होते हैं। बाप की बात को बुरा ना माना करो, बाप की बात को बुरा ना माना करो। जो बात बाप कहते हैं वो और कोई नहीं कह सकता।

0: रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। चलते का नाम गाड़ी, चलते ही रहना, रुकने का नाम मौत और चलने का नाम जिंदगी। काला पत्थर से किशोर कुमार जी हमको सुना दिए। किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा। कबूल और स्वीकार उनकी दुआ प्रार्थना हुई, जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती।
1: नाइस गिफ्ट। सारे गाना का

फिल्म निशान से निकाला गया है। सुनने वालों, कहते कि माँ बाप के लिए क्या शेर लिखूं, माँ बाप के लिए क्या शेर लिखूं, माँ बाप ने मुझे खुद शेर बनाया है।

मजबूर से ये सुंदर सा गीत हमने आपके लिए चला दिया। ज़िंदगी की कुछ ख़ास दुआएं ले लो, ज़िंदगी की कुछ ख़ास दुआएं ले लो, इस शुभ समय पर कुछ नजराने ले लो, भर दे रंग जो आपके जीवन को वो पलों में वो प्यारी बधाई, वो प्यारी सी बधाई ले लो।

0: वादा तो निभाए। आशा भोसले और किशोर दास जी ने सुना दी फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम। वक्त वक्त रिश्ता और इंसान की कीमत उसे खोने की बात ही समझ आती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते।
1: मित्रों, क्योंकि ये जीवन बहुत बेअंबना पूर्ण है, खुशी को जानने के लिए दुख की आवश्यकता होती है, मौन की सराहना करने के लिए शोर की और उपस्थिति की सराहना करने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। मित्रों, इसीलिए हो सके तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें।

दोस्तों, जीवन में कभी आशा मत खोना। आशा सब कुछ चालू रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। कभी मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कभी मत सोचो मित्रों कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन हमेशा सोचो, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। मित्रों, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे।

भाई बहनों, आप और आपका परिवार हमेशा हरे घास के मैदान की तरह फूलों के सुंदर रंगों और बेहद आकर्षक खुशबू के साथ खिलते रहें और एक व्यक्ति की तलाश में एक सच्चे व्यक्ति को मत खोइए, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है लेकिन सच्चाई हमेशा एक वास्तविकता है, हकीकत है। कृपया इसे याद रखें।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूँ।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिए परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फाइन दाख्तु खवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए है, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है। सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुन वालों, कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

को मन से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन एफएम पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूँगा कि अंदाख फॉल फ्रोइद। और गांधी जी का ये संदेश भूलना मत, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

कहते हैं कि उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

कहते हैं कि गरीबों की दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

कहते हैं कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसे भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों का बगिया में

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था, जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जा कर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जा कर के बार कीपर बनते हैं। तो उसी फिल्म से एक और गीत हम निकालेंगे और आपके लिए रखने वाले हैं।

शिरडी वाले साई बाबा फिल्म जो बनाया गया 1977 में, कहा जाता है कि 184 मिनट तलक जिनका रन टाइम यानी कि कुछ 3 घंटा का फिल्म जो जिनका और रिलीज डेट 1977 में हुआ था, उस समय जो ये फिल्म बनाया गया था और जिनका लेखक खास करके कादर खान जी ने और ये फिल्म को फिल्म का राइटर कहलाए हैं, यानी कि उन्होंने फिल्म को जो डायलॉग से अपना और सजाए हैं और डायरेक्ट जो किया गया है मनमोहन देसाई के जरिए। सुनने वालों, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है, जो काफ़ी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा करके जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए। इनमें से सबका अपना अपना होता है, तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन, जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे, तो कितना खूबियां होते थे उसके। हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 तक में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुन वाला हम अगला गीत, जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनने वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लिरिक्स बाय अनंत बख्शी।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हूं आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछुड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछुड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वाला ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कुलेखा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

0: आपने तो कहा था कि
1: ठीक ही तो कहा था, 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

सुनने वालों, ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, अ बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

जिंदगी आ बैठ, है जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गए होंगी मुझे भगाते भगाते। सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यहां तक मैं आपके साथ जुड़ा रहे। आशा ये रखता हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ चलाया गया। और यही आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर लगे होंगे। सुनने वालों, अगर आपको कोई ऐसा लगा हुआ होगा कि हमें अब अपना और सफ़र की ओर करना है, यानी कि सफ़र करना है अपना, और कोई प्रकार से जैसे भारत और ऐसे मलेशिया कितने सुंदर सुंदर देशों है जहां देखने के चीज़ बहुत है, जैसे कि कहीं भी जा सकते हैं और अपना सफ़र करने के, यानी कि फकंसीफिरन

जरूर अपना ध्यान रखना और ये बात मत भूलना, सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होता। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

ज़्यादा मिले, ज़रूरत से ज़्यादा मिले, उसको कहते हैं नसीब। ज़रूरत से ज़्यादा मिले, उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोते हैं, उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहने, ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उसको कहते हैं खुश नसीब। तो मैं यही सोचती हूँ कि आप वही खुश नसीब वाले हैं।

फिल्म उपकार से आपने सुने दादा मन्ना दे जी के आवाज में की कसमें वादे। प्रेम, प्रेम जिसे हम कहते हैं, प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना। हेत रेस्पेक्ट हैब हेत वार देरन नार एल कार्तू।

यहाँ से एक बार ही आपको हम लेकर चलते हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, किशोरदा की आवाज़ में फ़िल्म का नाम आपकी कसम।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, नहीं नहीं आएगा। किशोरदा की आवाज़ में आपकी कसम फिल्म के नाम।

किशोर दाग जी की आवाज़ में आने वाला पल जाने वाला है ये तो जाहिर है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, किसी का भला ना हो सके तो बुरा मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं।

राकेश जी की आवाज़ में जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। फिल्म आबरू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत।

दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, सिर्फ दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम फासे एहो और दूसरा उसका वहम।

0: सुरे फान हिंदुस्तानी रेडियो जो दनहाग न्यूटनस्ट्रैट नंबर 25 पे है।
1: क्या हुआ?
2: सुनो।
3: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
2: अब क्या सुनाए?

छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो, छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो, अगर गलतियाँ हो जाए तो माफ़ कर दिया करो, आई एम सॉरी। जिंदगी के राह को हमेशा रखो साफ, जिंदगी के राह को हमेशा रखो साफ, किसी से माफ़ी मांग लो तो किसी को कर दो माफ़।

अकेलापन से न जाने क्यों घबरा रहा है, अकेलापन से न जाने क्यों घबरा रहा है। मुझे मुझे तो वो तेरी बातें फिर से याद दिला रहा है। अकेलापन हमें सताते हैं, अकेलापन हमें सताते हैं, दिन में सपने और रात को जगाते हैं।

अति सुंदर क्या बयान है मैं ढूंढ रहा था। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया। मोम यानी कि हिल सा हिल तेर, नाजुक सी कोमल सी, मोम का मतलब है ये। अकेलापन एक सजा सी है, अकेलापन एक सजा सी है, लेकिन इनमें जीने लेकिन इनमें जीने में भी अपना अलग ही मज़ा भी है, है ना। कहते कि यूं ही बेवजह ना मुझे वो खोजता होगा, यूं ही बेवजह ना मुझे वो खोजता होगा, शायद शायद उसे भी ये अकेलापन नोचता होगा।

0: है बाबूजी?
1: जय सिंह, ये आवाज किसकी है?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसे लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।

कहते कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशी है, जी लो तो जिंदगी खो दो, बस या तो यादें हैं। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिनके हो जाए बस वही खास है।

हम आपको बहुत प्यार के साथ आपको हम यहाँ से स्वागत कर रही हैं सुनने वालों। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम अदाबर सो नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो? इस खूबसूरत दिवस में आप सब कैसे हो? बस यही आशा उम्मीद है कि आप जहां हो जैसे भी हो खुशहाल में हैं। आपको फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत सारे प्यार मिले, खुशियां मिले।

कहानी सुंदर से फरमाए हैं मुख्तार शाह और उनके साथ भी दे रहे थे उनके साथी। और कहते हैं कि वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, वो दरिया ही क्या जिसमें रवानी ना हो, जब होश ही नहीं जब जोश ही नहीं, किस काम की जवानी।

से पुकार कर रहे हैं, मोहम्मद रफी जी साथ दे रही है लता जी के आन मिलो सजना। टाइटल सॉन्ग जो हमने आपने सुने आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से सुनने वालों जो देनहाग शहर में है, हाँ देनहाग शहर में न्यू टाउनस्ट्रैट नंबर 25 पे है। दिल और फूल, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, दिल और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन लोगों के दिल और फूल से ज़्यादा, लोगों के दिल फूलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे कि आपके। जी हाँ, जैसे आपके दिल भी खूबसूरत है तो आपके दिन हमेशा, आपका दिन हमेशा फूलों की तरह भी बस खिलते रहें।

इस बार यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया के शेयर करेंगे हम, और मुख्तार शाह जी की आवाज़ में हम सुनेंगे जोश जवानी हाय रे हाय।

जी हाँ, जोश जवानी और हाय रे हाय, हम यहाँ से दुनिया के शेयर करें अराउंड वर्ल्ड जो हमने उस फिल्म से सुने हैं। और ये गाने वाला है मुख्तार शाह।

और यहाँ से हम साथ में मिलकर सुनेंगे रफ़ी जी की आवाज़ में कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है।

प्यार भरी आवाज है कि फिरता हूँ बेकरार, और कहीं करती होगी वो आपका इंतजार। सुन वालों, आपने सुने जाने पहचाने आवाज। फिल्म अभिमान के एक सुंदर सा गीत यहाँ से आपके लिए चला रही हूँ, और वो भी कोफर हुआ।

फिल्म अभिमान से निकाला गया है सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत जो कफर किया जन यानी कि नाख सॉन्ग है। लात जाओ लिख वंदाग स्ट्रालन, लात जे लिख वंदाग स्ट्रालन, ओन बोविस हेल्प ये एर फेलन में फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आपको एक शुभ दिन। En we mogen weer genieten van een mooie dag.

जी हाँ सुनने वालों, हमने मिलकर सुने और वो भी रजिस पनवर और पल्लवी जी की आवाज में। कहते हैं कि नेवर वेट फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहोन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि हम सब फिर उपस्थित हो गए स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर एक मजेदार कार्यक्रम में विषय रखा गया है। आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बबली जी अपना एंट्री लेते हैं, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी जो 8000 किलोमीटर दूर से और सही पर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो पहले बबली जी।
1: बड़ों की दी हुई आशीष और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती हैं तो जीवन रंगों से भर जाता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: बबली जी के ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। तो राजेंद्र जी, आप 8000 किलोमीटर सही पर आपके ओर से क्या संदेश है, आप अपना एंट्री लीजिए।
2: 8500 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन हमारा जो दिल है वो तो नीदरलैंड्स में ही है, इसीलिए तो हम इस कार्यक्रम को इतने दूर से भी करने का बड़ा अच्छा लगता है और लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो उनको भी बहुत ही मन भावुक होता है। लेकिन आज के जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत ही विशेष कार्यक्रम, यज्ञ विशेष। कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है यज्ञ विशेष। यज्ञ क्यों किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा करना चाहिए, इस प्रकार की सारी हम जानकारी देंगे। लेकिन जो लोग उदास बैठे हैं, क्यों ना उनके लिए एक भजन संजय जी सुना दिया जाए।
0: राजेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि जो अभी उदास, अभी शायद मामा भी थोड़ा से उदास बैठे होंगे ना।
2: हाँ, तो उदासी दूर हो जाएगी मामा की भी, तो सुना दिया जाए।
0: चला देते राजेंद्र जी।

0: ये सुनने वालों, और खास करके आज का जो विषय हमारा है, जो कितने प्रकार के यज्ञ होता है, उसके बारे में हमारे मास्टर जी जो भारत देश से ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो मास्टर जी आप ही बताइए कि कितने प्रकार के और यज्ञ और आज का जो विषय है उसके बारे में कुछ संदेश।
1: हाँ, आज का जो विषय है वो यज्ञ के ऊपर ही पूरा निर्भर है। यज्ञ विशेष तो यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, स्रोत और समार्थ। स्रोत का अर्थ है श्रुति प्रतिपादित यज्ञों को स्रोत यज्ञ, और स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को समार्थ यज्ञ कहते हैं। जो लोग पंडित हैं वो बड़ी अच्छी प्रकार से इस चीज को समझ रहे होंगे, और जो पंडित नहीं हैं वो इसको पूछ सकते हैं। जो नहीं समझ रहे होंगे तार कर सकते हैं रेडियो में, और रेडियो के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि स्रोत और समार्थ का क्या मतलब होता है। तो स्रोत यज्ञ में केवल श्रुति यानी सुनना, प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग होता है। जैसे मंत्र बोला वो सुना, वो यज्ञ स्रोत हो गया। और स्मार्ट यज्ञ में वैदिक पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। वैदिक यानी जो वैद वेद है उनके अनुसार, पौराणिक यानी सबसे पुराने, और तांत्रिक यानी जो तंत्र क्रिया होती है उन मंत्रों का प्रयोग होता है स्मार्ट यज्ञ में। तो वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें पांच यज्ञ ही प्रधान माने गए। जो वेद है हमारे, चार वेद हैं, उनमें बहुत प्रकार के यज्ञों का प्रमाण मिलता है। कैसे कैसा है जब वेद पढ़ेंगे तो सब लोग समझेंगे इस चीज को। लेकिन जो चार यज्ञ हैं उनमें प्रमुख है, प्रधान है, यानी सबसे आगे है। कैसे? अग्निहोत्रम, यानी जो हम अग्नि जलाते हैं उसमें यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं अग्निहोत्रम। फिर दर्श पूर्णमासो, पूर्णमासी के दिन, चतुर्मास्यानि चार महीने में एक बार, और पशुयांग और सोम यज्ञ। ये यज्ञ विशेष है। ये पांच प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, इसमें एक यज्ञ जो जुड़ा सोम यज्ञ, इसलिए पांच हो गए हैं। यह श्रुति प्रतिपादित है। श्रुति मतलब जो सुनने से आगे परंपरा बढ़ी है, श्रुति उसके प्रतिपादित है। वेदों में स्रोत यज्ञों की अत्यंत महिमा वर्णित है। हम लोग जब वेद की किताबें पढ़ते हैं, वेद सुनते हैं, सुनाते हैं, उसमें ये वर्णन मिलता है स्रोत यज्ञों को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। यानी सबसे बड़ा कर्म क्या है? स्रोत यज्ञ, वो श्रेष्ठ है। कुल स्रोत यज्ञों को 11 प्रकार से विभक्त कर उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। यानी 11 प्रकार से यज्ञों का संक्षिप्त यानी कम रूप में परिचय दे रहे यज्ञों का, कि कैसे कैसे यज्ञ होते हैं। स्मार्त यज्ञ सबसे पहला है कि विवाह के अंतर्गत विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन करके जिस अग्नि में प्रातः साय नित्य हनादिकृत्य यज्ञ किए जाते हैं उसे स्मार्त अग्नि कहते हैं। गृहस्थ को स्मार्त अग्नि में पका भोजन प्रतिपादित करना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, उनको
0: गृहस्थ माने तो राजेंद्र जी, गृहस्थ माने जो शादीशुदा जो घर गृहस्थी में रहते हैं।
1: हाँ हाँ, स्मार्त अग्नि में पका भोजन प्रतिपादन, उनको पका भोजन प्रतिपादन करना चाहिए। और दूसरा नंबर का आता है इसमें स्रोता ध्यान यज्ञ। दक्षिणाग्नि विधि पूर्वक स्थापना को स्रोता ध्यान कहते हैं। पितृ संबंधी कार्य होते हैं, जैसे आप लोग कराते हो ना पितृ पूजा,
0: हाँ जी,
1: उसको कहते हैं स्रोताधान यज्ञ। और फिर तीसरा जो यज्ञ है वो दर्श भूषणार मास यज्ञ। दर्श भूर्ण मास यज्ञ यानी अमावस्या और पूर्णिमा को होने वाले यज्ञ को दर्श और पौर्ण मास कहते हैं। इस यज्ञ का अधिकार सप्तनीक होता है। इस यज्ञ का अनुष्ठान आजीवन करना चाहिए। यानी आजीवन मतलब जब तक न मरे तब तक करना चाहिए। जैसे हमारे मामा जी करते हैं, वो आजीवन यज्ञ करते हैं। यदि कोई जीवन भर करने में असमर्थ हो तो 30 वर्ष तक तो करना ही चाहिए। अगर कोई पूरा जिंदगी भर न कर सके तो 30 वर्ष तक ये यज्ञ करना चाहिए। कौन से? अमावस्या और पूर्णिमा के यज्ञ। तो आप अमावस्या और पूर्णिमा तो सब लोग समझते ही हैं।
0: जी, अमावस्या और पूर्णिमा। राजेंद्र जी, इसमें थोड़ा से और जो हम लोग अपना सरनामी में टूटा भाषा में और समझा दिया जाए कि अमावस्या और कृष्ण पक्ष थोड़ा से और इसमें संदेश रख दिया जाता तो और बढ़िया होता।
1: हाँ, तो पूर्णिमा जब होती, जब चंद चांद पूरा हो जाता है, 15 दिन में पूरा हो जाता है, 15 दिन में कम कम होते होते एकदम हो जाता है,
0: अंधेरा हो जाता,
1: तो उसी को अमावस्या, और जब पूर्ण हो जाता पूर्णिमा कहते हैं।
0: ऐसा तो राजेंद्र जी, ये संदेश बड़ा धमाकेदार संदेश है यज्ञ के अंतर्गत, ना क्यों ना हम थोड़ा से एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: ये सुंदर सा गीत श्री देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा अति सुंदर रूप से और जो बनाया गया ये नया एक्टर्स जिसमें ऋतिक रोशन ने अपना काम अपना कला से प्रदर्शन दिया। राजेंद्र जी, आज का विषय का बोल है यज्ञ और कितने प्रकार के यज्ञ करना चाहिए, कर सकते हैं लोग और किया जाता है, उस अंतर्गत में संदेश आप रख रहे हैं।
1: जैसे कि यज्ञों की बात चल रही थी, सबसे पहले हमने बात करी है कि यज्ञ विशेष यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, स्रोत और समार्थ। फिर स्रोत समार्थ में पांच प्रकार के हुए, फिर पांच प्रकार के अलग अलग अलग प्रकार के, तो हम चौथाई पे पहुंचे थे चतुर्मास्य यज्ञ पे। चार चार महीने पर किए जाने वाले यज्ञ को चतुर्मास्य यज्ञ कहते हैं। इन चारों महीने को मिलाकर चतुर्मास यज्ञ होता है। चतुर्मास मतलब चार चार महीने पे जो यज्ञ किया जाता,
0: हर एक चार महीना पे किया जाता था।
1: हाँ, वो चतुर्मास। फिर होता है पशु यज्ञ। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में या दक्षिणायन या उत्तरायण में संक्रांति के दिन एक बार जो पशु याग किया जाता है उसे निरुढ़ पशु याग कहते हैं। जब उसके महीने में आप देखते होंगे कि माघ के महीने में जब सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ता है और इधर से उत्तरायण के व्यू माघ के महीने में आप देखते होंगे सूर्य जो है छह महीने दक्षिणायन की तरफ जाता है, छह महीने उत्तरायण की तरफ जाता
0: है। जी जी, छह दक्षिणायन और छह महीने उत्तरायण हो जाता है।
1: हाँ, तो उस समय एक यज्ञ किया जाता है, उसको पशु यज्ञ बोलते हैं। और फिर आ गया आग्रजानिष्टि नवान यज्ञ, यानी प्रतिवर्ष बसंत और शरद ऋतियों नवीन अन्न से यज्ञ, गेहूं चावल से जो यज्ञ किया जाता है उसे नवान यज्ञ कहते हैं।
0: तो ये राजेंद्र जी, ये नवीन यज्ञ जैसे आप कह रहे हैं, तो ये बात हो जाता कि नया फसल जो कटे हैं उसे लेकर ये यज्ञ किया जाता है।
1: हाँ, जब फसल पक्के तैयार हो जाता है खेत में।
0: हाँ जी,
1: तो उस तैयारी, जो फसल तैयार हो जाता है उसकी तैयारी और कटने से पहले एक यज्ञ किया जाता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किया जाता है। और वो नवान यानी नवा अन्न जो आता है ना, उसको बोलते नवान यज्ञ।
0: नवान यज्ञ,
1: हाँ, आग्रजानष्टि बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में उसको नवान यज्ञ बोलते हैं। सातवां नंबर का जो यज्ञ है वो सौतामणि यज्ञ यानी पशु यज्ञ। सौतामणि इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, सौतामणि यज्ञ इंद्र संबंधी पशु यज्ञ है। यह यज्ञ दो प्रकार का है, एक वह पांच दिन में पूरा होता है। सौतामणि यज्ञ में दो गौ दुग्ध के साथ सुरा मध्य का भी प्रयोग होता है। सुरा यानी मध्य, मतलब
0: नहीं पता मुझे,
1: जो दारू दारू बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: ड्रिंक।
0: हाँ,
1: हार्ड ड्रिंक उसको सुरा बोलते हैं, मध्य।
0: ऐसा
1: मदपान कहते हैं ना, मदपान।
0: हाँ जी,
1: उसको बोलते सुरा। हाँ, उसका भी प्रयोग होता है सौतामणि यज्ञ में, इसलिए हमारे मामा जी जो है उसका प्रयोग करते हैं यज्ञ में। किंतु कलयुग में वज्र है दूसरा पशु याग कहा जाता है, क्योंकि इसमें पांच अथवा तीन पशुओं की बलि दी जाती है। पशुओं की भी बलि दी जाती है यज्ञ में, ये तो पांच की या तो तीन की। एक यज्ञ जो सौतामणि यज्ञ है वो पशु यज्ञ है, उसको ये तो सुरा से किया है। सुरा दो प्रकार के, एक सुरा से और एक पशु बलि से, जो कि अभी थोड़ा सा मैंने देखता हूँ कि कम हो गया है, लेकिन अभी भी है कहीं ना कहीं।
0: कहीं कहीं गांव आदि में होता होगा ना?
1: नहीं, बहुत जगह अभी ये पशु बलि बंद हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी चल रहा है।
0: अच्छा,
1: नंबर आठ है सोम यज्ञ। सोमलता द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसे सोम यज्ञ कहते हैं, या बसंत में होता है। बसंत यानी जब फूल खिलते हैं चारों तरफ एकदम,
0: जिसे हम लंतक लंतक कहते हैं ना।
1: हाँ, वह यह यज्ञ एक दिन ही पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ में 1600 ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं। ये यज्ञ केवल एक दिन का होता है और इसमें 16 ब्राह्मण बैठते हैं यज्ञ करने के लिए। नवा जो यज्ञ है वो वाजपेयी यज्ञ हो गया। इस यज्ञ के आदि और अंत में बृहस्पति नामक सोम याग अथवा अग्निष्टोम यज्ञ होता है। यह यज्ञ शरद ऋतु में होता है। शरद ऋतु मतलब जो ठंडी हो, ठंडी पड़ती है, जैसे भारत में भी ठंड आने वाली, ज्यादा ठंडा अभी कम है, तो उस समय ये यज्ञ होता है।
0: ऐसा
1: ये अभी जो शरद चल अब शरद ऋतु चल रही है, शिशिर आने वाली है, क्योंकि भारत में तो 6 ऋतुएं है ना, तो शरद ऋतु अभी चल रही है, शिशिर मतलब जब ज्यादा ठंडी होगी उसको शिशिर बोलते हैं, तो इस समय यज्ञ होता है।
0: वो तो शरद इस समय भारत में चल रहा है और शिशिर आने वाला है।
1: हाँ शरद चल रहा है।
0: तो जैसे कि ये बात कहा जाता है कि 24 दिन बाकी है 222 के पूर्ण होने में और 223 प्रारंभ होने वाला है, तो ये इसी साल हो जाएगा शिशिर।
1: हाँ 15 तारीख से अभी जब ज्यादा ठंडी हो जाती है तो उसको शिशिर बोलते हैं। हाँ दिसंबर जनवरी ज्यादा रहता है, दिसंबर जनवरी, लेकिन जो मेन शिशिर होता है 15 दिसंबर के बाद।
0: ऐसा तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जरूर जरूर जरूर,
0: क्योंकि ये संदेश जो आपने रख रहे हैं जो यज्ञ के अंतर्गत, तो ये काफी जानकारी है जो हम सबके में कितने बात नहीं पता था और इस बात को ज्ञान हो रहा है, तो हम पहले एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे।

देखकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल

0: ये सुंदर सा गीत निकाला गया और फिल्म का नाम जो बाल गणेश से निकाला गया, ये सुंदर सा गीत हम सब आपके लिए प्रस्तुत रखे। और राजेंद्र जी जो इस समय दूर सही पर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजेंद्र जी आगे का कार्यक्रम आप ही सुनाइए।
1: आगे का जो कार्यक्रम है, हम बात कर रहे थे यज्ञ की, नौ प्रकार के यज्ञ की बात हो चुकी है, दसवां है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा कि जब भगवान राम एकदम रावण से विजय प्राप्त करके लंका लौटे और लंका से लौट के हमारे भारत में आए, रावण से विजय प्राप्त करके, और जब वहां पे आए अपने जगह पे, तो उन्होंने भी एक राजसूय यज्ञ करा और घोड़ा छोड़ दिया। जब राजसूय यज्ञ का मतलब होता है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाता है, तो उसके करने के बाद क्षत्रिय राजा जो है समाज चक्रवर्ती उपाधि को धारण करता है, मतलब वो सबसे जीत जाता है, और जो अगर कोई राजा नहीं मानता है तो उसको जीतना होता है। जब वो सबसे जीत जाता है तो उसी को चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं,
0: चक्रवर्ती सम्राट।
1: चक्रवर्ती सम्राट तो भगवान राम ने भी करवाया, और इसके बाद जो युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ कराया था, जब वो जीत गए थे युद्ध तो वो सब चक्रवर्ती हो गए थे।
0: अच्छा,
1: तो इसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। और राजसूय यज्ञ के कराने के बाद ये ऐसा एक यज्ञ होता है। इसके बाद जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। ओ भगवान राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था, पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था।
0: ऐसा,
1: तो जब हाँ दिग्विजय के लिए जब घोड़ा छोड़ा जाता है तो यह यज्ञ 2 वर्षों से भी अधिक समय में समाप्त होता है, क्योंकि पूरा देश में घोड़ा छोड़ेगा तो घोड़ा 2-4 दिन में तो कहीं जाएगा नहीं, वो घोड़ा अलग अलग जगह जाएगा, तो जब दो वर्ष से भी अधिक समय, इसलिए कहा कि पूरा देश में जाएगा ना, और उस घोड़े को जो पकड़ लेगा उसको यज्ञ, उसको युद्ध करना होगा, फिर उसको जीतना होगा, तब इस यज्ञ की समाप्ति होती है। इस यज्ञ का अधिकार सार्वभौम चक्रवर्ती राजा को ही होता है। जब राजा चक्रवर्ती हो जाता है तो इसके बाद ही वो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, यानी पहले राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। जैसे पहले ग्रेजुएशन करेगा विद्यार्थी, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो वैसे इसमें पहले राजसूय यज्ञ और इसके बाद अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद यज्ञ आता है पुरुष मेघ यज्ञ, इस यज्ञ समाप्ति 40 दिनों में होती है। ऐसा यज्ञ जो 40 दिन में समाप्त पूर्ण हो सकता है। इस यज्ञ को करने के बाद यज्ञकर्ता गृह त्याग पूर्वक वाम प्रस्थान में प्रवेश कर सकता है, यानी जो यज्ञ करता है उसको त्याग पूर्वक वान प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है, यानी 50 साल से 75 साल की जो आयु है, 50 साल में यज्ञ करके फिर वो वानप्रस्थ की ओर चले जाता है। तो वो यज्ञ तो बहुत लोग कर सकते हैं, संजय जी आप भी कर सकते हैं उस यज्ञ को। हम
0: राजेंद्र जी ये तो मैं सुन रहा हूँ पहला बार ऐसा बात, क्योंकि समय होता ना एक बालकपन, एक गृहस्थ, एक 50 साल के बाद क्या कहते हैं उसे,
1: वानप्रस्थ,
0: और एक हो जाता है 75 के बाद सन्यासी ना,
1: सन्यासी। तो इसलिए तो आपका जो समय है, इस समय आपका जो वानप्रस्थ का समय चल रहा है, तो आप इस यज्ञ को करके वानप्रस्थ ले सकते हैं।
0: ऐसा,
1: हाँ। और मामा का जो है समय चल रहा है सन्यास का, तो उनको सन्यास का यज्ञ करना चाहिए।
0: तो मामा को करना चाहिए वो, क्योंकि वो 75 से ऊपर है।
1: हाँ, इसलिए
0: तो
1: 13वें प्रकार का जो यज्ञ है वो सर्वमेघ यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी प्रकार के अन्न, मतलब जो खाद्य पदार्थ है हमारे खाने वाले अन्न, उसको
0: खाने पीने का पदार्थ है।
1: हाँ, और वनस्पतियों का हवन होता है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जो वनस्पति है पौधे, उनका हवन होता है। अन्न मतलब जैसे चावल, जौ, तिल, और वनस्पति मतलब जो पत्तियां हैं और वो है, वो सब चीज उसमें पड़ती है।
0: क्योंकि राजेंद्र जी कहने के बात यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट होता है ना, जो हमारे यज्ञ में आदि प्रयोग होता है, तो सब नेचर नेचर से निकाला जाता है।
1: हाँ,
0: सब नेचर प्रोडक्ट होते हैं।
1: हाँ हाँ, तो इस यज्ञ में क्या होता है, सभी प्रकार के यज्ञ हो जाते हैं, कि जो यज्ञ ये यज्ञ करता है जो व्यक्ति, वो कैसे यज्ञ करना चाहिए उसको वनस्पतियों का, उसको जौ तिल चावल हवन सामग्री उसमें मिलाई जाती सारी चीज, मखाना है, ड्राई नट्स है, बहुत प्रकार की चीजें मिलाती है। और ऐसे यज्ञ में 34 दिन का समय लगता है इस यज्ञ को करने में। ये सर्वमेक यज्ञ सब लोगों के लिए होता है, सर्वमेक यज्ञ। अगला जो यज्ञ है वो एकाह यज्ञ है। एकाह मतलब होता है
0: राजेंद्र जी,
1: जी
0: जैसे कि आपने कहा एक 40 दिन के, ये वाला 34 दिन के, पर ऐसा अभी तक होता है भारत में भी होता है? मुझे तो नहीं लगता कि हॉलैंड में ऐसे किया जाता होगा।
1: हॉलैंड में हम लोग कराएंगे अब आके, जब मैं आऊंगा उधर करेंगे ऐसा, लेकिन भारत में होता है।
0: ऐसा होता अभी?
1: हाँ ऐसा होता है।
0: ओके ओके,
1: अलग अलग स्थानों में होता है और पूर्ण रूप से आज विधि विधान से जो पंडित लोग कार्य करते हैं, जो गुरुकुल में पढ़े हैं और जिनको शुरू से ये विद्या सिखाई गई, तो वो करते भी हैं और कराते भी हैं। अब हम बात कर रहे थे एकाह यज्ञ की। एकाह यज्ञ का मतलब होता है कि एक दिन में होने वाले यज्ञ को एकाह यज्ञ कहते हैं।
0: एकाह यज्ञ,
1: एकाह। इस यज्ञ में एक यज्ञवान और 16 विद्वान होते हैं, यानी एक तो होता है इनका मुखिया और 16 होते हैं यज्ञ करने वाले विद्वान। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और फिर इसके बाद आगे की यज्ञों की बात करें।
0: राजेंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मानो तो
1: गंगा, न मानो तो बहता पानी,
0: बस यही यही बात है, यही बात है। और हम चला देते वही गीत राजेंद्र जी।
1: जरूर जरूर।

0: पानी जो मानेंगे तो जरूर आपको गंगा दिखाई देंगे, गंगा का पवित्र पावन जल से स्पर्श होंगे, और ना मानेंगे तो बस यही होगा कि आप यहाँ से जा करके और गंगा स्नान करने को गए पर बस जल से स्नान करके आ गए, तो मानना के बात हो जाते हैं। राजेंद्र जी, यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ आज मैंने सुना है ये तो मैं कभी नहीं सुना था, तो क्या संदेश और रखने वाले हैं
1: आपको? इस प्रकार के यज्ञ लोगों को करवाने हैं वहाँ पे, क्योंकि आप यज्ञ पंडित हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ कराते हैं, तो ये यज्ञ भी होने चाहिए। बात करते हैं रुद्र यज्ञ की। यह तीन प्रकार का होता है, रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र यज्ञ। 5, 7, 9 दिन में होता है। महारुद्र 9-11 दिन में होता है और अतिरुद्र जो है 9 से 11 दिन में होता है। रुद्र यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं, यानी 16 या 21 पंडित होने चाहिए। और महारुद्र में 31 अथवा 41 विद्वान होते हैं, जो महारुद्र है उसमें 31 से 41 पंडित होने चाहिए। और अतिरुद्र यज्ञ में 61 से 71 यानी 61 से 71 विद्वान होते हैं।
0: ऐसा
1: रुद्र, हाँ, रुद्र यज्ञ में हवन सामग्री 11 मण, महारुद्र में 21 मण और अतिरुद्र में 70 मण हवन सामग्री होती है। तो मान, हमने सुना है कि जो हवन सामग्री अभी बन रही है उसमें पूर्ण रूप से हवन सामग्री नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या लोग मिक्स करके और हवन सामग्री के नाम से बेच रहे हैं, लेकिन अभी भारत में जो वर्ल्ड योग इंस्टीट्यूट है उसने बहुत बढ़िया रूप से हवन सामग्री को बनाया है, मैंने देखा है। तो वो वाले हवन सामग्री से अगर ये महारुद्र यज्ञ हो 70 मण, यानी एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो।
0: 40 किलो,
1: तो 70 मण में होना चाहिए। एक मण में जब 40 किलो होता है तो 70 मण में कितना किलो होगा? ये देखो, 2800 किलो होगा।
0: तो 2800 किलो का उसे हवन करना चाहिए।
1: हाँ, तो जो महा अति अति रुद्र यज्ञ जो करेगा वो 2800 किलो हवन का होगा, और वो कम से कम 20,000 यूरो का पड़ेगा।
0: ऐसा?
1: हाँ, लेकिन इसके बाद वो डायरेक्ट जो है भगवान शंकर से बात कर सकता है।
0: राजेंद्र जी, ऐसा देखो, ये मैं आपसे सुन रहे हैं, मैं सुना हूँ कि भारत में भी ऐसे लोग भंडारा भी करते हैं, जैसे कि 100 किलो का आलू और 100 किलो का आटा, इस प्रकार से।
1: हाँ हाँ,
0: तो ऐसा भी जैसे कि हवन के आपने एक मेज बार है एक के साथ जोड़ दिया गया, तो ऐसे भी भारत में रखा जाता है।
1: हाँ, रखा जाता है इस प्रकार का। अब बात करते हैं विष्णु यज्ञ की। यह यज्ञ 3 प्रकार का होता है, विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, अति विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ में 5, 7, 8 अथवा 9 दिन में होता है, और विष्णु यज्ञ 9 दिन में, अति विष्णु 9 दिन में अथवा 11 दिन में होता है, और विष्णु यज्ञ में 16 अथवा 41 विद्वान होते हैं, अति विष्णु यज्ञ में 61 अथवा 71 विद्वान होते हैं, और विष्णु यज्ञ में हवन सामग्री 11 मण, महाविष्णु में 21 मण और अति विष्णु में 55 मण लगती है। तो मान, हम इस यज्ञ को पहले भारत में कराएंगे, फिर इसको ऑनलाइन करके नीदरलैंड में भी कराएंगे।
0: ऐसा?
1: हाँ, क्योंकि ये यज्ञ अगर हो जाएगा तो पूरा भारत का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जिस देश में होगा वही देश का वातावरण एकदम शुद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं हरिहर यज्ञ की। हरिहर महायज्ञ में हरि विष्णु और हर शिव इन दोनों का यज्ञ होता है। हरिहर यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। हरिहर यज्ञ में हवन सामग्री 25 मण लगती है। यह महायज्ञ 9 दिन अथवा 11 दिन में होता है। और शिव शक्ति महायज्ञ, जो शिव शक्ति यज्ञ है उसके बारे में बात करते हैं। शिव शक्ति महायज्ञ में शिव और शक्ति यानी दुर्गा, शक्ति किसको बोलते हैं? दुर्गा को।
0: राजेंद्र जी, पर उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, तो हम न्यूज और कमर्शियल के बाद फिर दोस्तों अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: धर्म सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk hieronder vallen

0: यहाँ तक जो हमारे न्यूज और कमर्शियल का कार्यक्रम चला, और यहाँ से फिर कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेन हाग शहर से हॉलैंड देश और लगभग 188 देशों में ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मास्टर जी जो दिल्ली शहर से और जुड़े हुए हैं ये कार्यक्रम में, अपना सहयोग दे रहे हैं और अपना ज्ञान को हम सब के साथ बांट रहे हैं। तो राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और क्या संदेश है? और
1: संदेश यही है कि जो हम लोग यज्ञ की बात कर रहे थे कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और कितने हवन सामग्री इन यज्ञों में लगती है, कितने मण लगते हैं, यानी ये 40 किलो का एक मण होता है। तो मैंने देखा है कि 20,000 यूरो तक का हवन सामग्री एक एक यज्ञ में लगता है, लेकिन इस यज्ञ करने के बाद जो फल की प्राप्ति होगी वो तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो लोगों को देखना चाहिए कि अगर कोई यज्ञ कराना चाहता है तो वहां पे करा सकता है। बात करते हैं शिव शक्ति महायज्ञ की। शिव शक्ति यानी शिव भगवान शंकर को बोलते हैं, शक्ति दुर्गा जी को बोलते हैं, उनकी जो पत्नी है उनको शक्ति का रूप है। इन दोनों का यज्ञ होता है, शिव यज्ञ प्रातः काल और सा यानी शक्ति यज्ञ दुर्गा का, इन दोनों का यज्ञ होता है। शिव यज्ञ प्रातः काल में और मध्यान्ह में होता है, सुबह या शाम दिन में होता है, मध्यान्ह मतलब दोपहर के बाद। इस यज्ञ में हवन सामग्री 15 मण लगती है, 21 विद्वान होते हैं। या महायज्ञ 9 दिन अथवा 11 दिन में सुसंपन्न होता है। कितना मण सामग्री लगती है इसमें? 15 मण सामग्री, यानी
0: 15 के जोड़ा जाए कि एक मण जब 40 किलो को होता है ना, गुना ज्यादा?
1: नहीं नहीं, 15 × 40 करो तो होता है 600 किलो
0: का।
1: हाँ, 600 किलो का ये हो जाता है।

0: तो राम यज्ञ, यहाँ किसके बाद आता, राम यज्ञ। राम यज्ञ विष्णु यज्ञ की तरह ही होता है, राम जी की आहुति होती है। राम यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान, हवन सामग्री 15 मण लगती है। यह यज्ञ 8 दिन में होता है,
1: 8 दिन।
0: तो राम यज्ञ भी विष्णु यज्ञ की तरह ही होता है, उसमें 8 दिन लगते हैं। और विद्वान कितने होते हैं, पंडित कितने होते हैं, 16 से 21 पंडित होते हैं। इसके बाद आता है गणेश यज्ञ। गणेश यज्ञ में 1,00,000 यानी 1,00,000 आहुति होती है, 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। गणेश यज्ञ में हवन सामग्री 21 मण लगती है। यह यज्ञ 8 दिन में होता है, गणेश जो यज्ञ होता है वो 8 दिन में हो जाता है, लेकिन 1,00,000 आहुति इसमें होनी चाहिए।
1: तो इतने ज्यादा आहुति, आहुति माने तो राजेंद्र जी इसे थोड़ा से और हमारी सरनामी में ट्रांसलेट कीजिए कि आहुति के मतलब क्या है।
0: तनी सा सरनामी में इसको ट्रांसलेट कर सकेला, इसको बोले लग ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक आहुति हुई।
1: तो आहुति के मतलब है जो जो जो उसमें हवन में, हवन कुंड में छोड़ा जाता है,
0: जो हवन कुंड में छोड़ा जाता है, स्वाहा किया जाता है, उसको आहुति, वही आहुति होती है
1: ऐसा।
0: हाँ, इस प्रकार के जो आहुति बता रहे हैं कि 1,00,000 आहुति होनी चाहिए, इतने दिन होने चाहिए, इतने विद्वान होने चाहिए, विद्वान अथवा पंडित
1: जी।
0: इसके बाद 21वां प्रकार का जो यज्ञ आता है वो ब्रह्म यज्ञ होता है, प्रजापति यज्ञ। प्रजापति यज्ञ में 1,00,000 यानी 1,00,000 आहुति इसमें होती है, जैसे गणेश जी के यज्ञ में होती है। इसमें 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। प्रजापति यज्ञ में 12 मण सामग्री लगती है और 8 दिन में होता है। देखो, जो गणेश यज्ञ में सामग्री होती थी वो कितने, 21 मण होती है, प्रजापति में हो गई है 12 मण, यानी कम सामग्री इसमें थोड़ा लगती है,
1: ऐसा
0: ऐसा। और इसके बाद आता सूर्य यज्ञ। सूर्य यज्ञ में 1,00,000 आहुति होती है, ये बड़का यज्ञ रहला मान।
1: अच्छा,
0: हाँ, 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। सूर्य यज्ञ में 8 अथवा 21 दिन में किया जाता है। इस यज्ञ में 12 मण हवन सामग्री लगती है, सामग्री इसमें ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन जो मंत्र होते हैं इसमें वो ज्यादा होते हैं, आहुतियां ज्यादा दी जाती है, लेकिन हवन सामग्री कम लगती है,
1: ऐसा।
0: इसके बाद आता है दुर्गा यज्ञ। दुर्गा यज्ञ में दुर्गा सप्तशती से हवन होता है। दुर्गा यज्ञ में हवन करने वाले 4 विद्वान होते हैं अथवा 16, या तो 4 लोगों से भी करा सकते हैं और 16 ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं, 21ों से भी करा सकते हैं, 21 विद्वानों से भी करा सकते हैं। यह यज्ञ 9 दिन का होता है। हवन सामग्री 10 मण अथवा 15 मण लगती है, 10 या तो 10 मण लगाओ या तो 15 मण लगाओ। अगर आपके पास पंडित कम है तो कम लगेगा, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, 10-15 मण का करीब करीब लग जाएगा। इसके बाद आता है 24वां यज्ञ है, उसका जो विशेष महत्व है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो है वो बड़ा विशेष, उसमें बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन उसके पहले भी एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ को लक्ष्मी नारायण यज्ञ के पहले एक यज्ञ उसको बोलते हैं लक्ष्मी महानारायण यज्ञ के पहले जो यज्ञ है। दुर्गा यज्ञ की बात हो गई है, दुर्गा सप्तशती की लक्ष्मी यज्ञ, जो लक्ष्मी महानारायण यज्ञ है उससे पहले लक्ष्मी यज्ञ होता है, क्योंकि लक्ष्मी और महानारायण, महानारायण मतलब भगवान विष्णु और लक्ष्मी यानी उनकी पत्नी, और उससे पहले केवल लक्ष्मी का, लक्ष्मी का यज्ञ बहुत लोग करते हैं। लक्ष्मी यज्ञ में श्री सूक्त से हवन होता है, आप कराते भी होंगे लक्ष्मी यज्ञ से, श्री सूक्त से। और लक्ष्मी यज्ञ में 1,00,000 आहुति होती है। इस यज्ञ में 11 अथवा 16 विद्वान होते हैं या 21 विद्वान, इसमें भी या तो 11 या तो 16 या तो 21 पंडित होने चाहिए। विद्वान 8 दिन में किया जाता है, और अब कितने दिन में किया जाता है विद्वानों द्वारा, 8 दिन। 15 मण हवन सामग्री लगती है, इसमें भी कम हवन सामग्री लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन जो अब लास्ट यज्ञ है 25वां, वो है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लक्ष्मी और नारायण का ज्ञान होता है, प्रातः लक्ष्मी दोपहर नारायण का यज्ञ होता है, सुबह को लक्ष्मी का होता है और दोपहर में नारायण का यज्ञ हो रहा है। 108,000 अथवा 125,000 आहुतियां होती है। ये तो 108,000 आहुति करो या तो 125,000 आहुति देते हैं। इसमें 30 मण हवन सामग्री लगती है, 21 विद्वानों से होते हैं। यह यज्ञ 8 दिन 9 दिन अथवा 11 दिन में पूर्ण होता है। तो इस प्रकार जैसे लोगों ने आज यज्ञ के बारे में बात सुनी और इतने मन सामग्री लगती है, मैं देखा हूँ कि नीदरलैंड में यज्ञ तो होते हैं लेकिन इतने बड़े यज्ञ मैंने नहीं देखे कभी। और इतने बड़े यज्ञ अगर करेंगे तो पहले वहाँ परमिशन लिया जाएगा, वहाँ धुआं नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब सुविधा तो भारत में ही हो सकती है। जिन लोगों को यज्ञ कराना है वो डायरेक्ट मामा जी के साथ भारत आ जाएंगे, यहाँ सब यज्ञ सारी व्यवस्था पूर्ण है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का कार्य जो है ये पूर्ण कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई परमिशन किसी के लेने की जरूरत नहीं, यहाँ सर्व परमिशन सर्व सम्मोपन होता है। तो यज्ञ के बारे में अगर किसी को कुछ और पूछना है तो रेडियो के माध्यम से तार कर सकते हैं और यज्ञ की बात कर सकते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, ये इतना काफ़ी जानकारी आप हम सबको यज्ञ के अंतर्गत जो आज का विषय रखा गया था उस अंतर्गत हाँ। में काफ़ी संदेश सुना ही चुके हैं। क्यों ना हम एक हाँ। सुंदर से गीत के ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
0: जरूर

ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने रेडियो फाहुन हिंदुस्तानी द्वारा, और कार्यक्रम जो चल रहा है इस समय जो ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो चल रहा है। तो दोस्तों सुनने वालों, अगला संदेश जो बबली जी हम सबके सुनाने वाले हैं, और आज का संदेशों में संदेश

0: जैसे कि अभी संदेश आपने सुने राजेंद्र जी के जो ओर से, जो कितने तादाद में यज्ञ किया जाता है, किया जा सकता है और अभी भी किया जाता है। और इससे बबली जी, इसे क्या इस बात को सुन के आप कुछ संदेश रखने वाले हैं?
1: मेरा संदेश तो थोड़ा दूसरा है, राजेंद्र जी का तो वो यज्ञ के ऊपर था।
0: राजेंद्र जी का इस संदेश जो यज्ञ के ऊपर था और आपका संदेश कुछ दूसरा है, तो क्यों ना आप अपना संदेश हम सब के सभी सुनने वालों के लिए रख देते हैं।
1: हाँ जी जरूर। एक बार श्री कृष्ण जी ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे काना, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। यह मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं।
0: ये संदेश अभी आगे बढ़ाने वाले हैं आप।

0: ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डनाक शहर से, और यहाँ हमारे कार्यक्रम में हमारे साथी शिव जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, और बबली जी जो कृष्ण भगवान और उनके गाय के अंतर्गत में कुछ संदेश रखने वाले थे। तो बबली जी आप जरूर अपना संदेश रखिए।
1: गाय बोली, हे काना, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ ही कहा था। यह मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। यह भले ही मुझे माँ ना माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ? भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन्हीं आंसुओं की बूंदों को अंजलि में लेकर यह संकल्प किया, हे गौ मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है, मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है।

0: हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे यानी कि दनहाह के एक ऐसा व्यक्ति जो कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि शिवजी आपके पास कैसे इतना समय होते हैं, तो सर्वप्रथम आपके स्वागत किया जाता है।
1: हाँ जी हाँ, नमस्कार सब कोई के सुनने वाले के। अब मैं एक दूसरे कार्यक्रम से आया है जो उनके नाम है स्टार्स मार्कर्स।
0: हाँ तो स्टार्स मार्कर्स जी, जो कार्यक्रम का जिसमें आप भाग ले रहे थे और आप आए
1: जी।
0: पर शिव जी, गत दिनों मैं रेडियो सुन रहा था, तो मैं सुन रहा था आपको दनहाह एफएम पर भी
1: जी,
0: और उसमें आप किस कारण भाग लिए?
1: उस कारण कि हमें रोड क्रश बेल किया और बोले कि आप इतना दिन से काम करे हैं, हम मंगिला आपके रेडियो पर, तो उस सेंट्रल विवृत जो रहा वहाँ पर बोले आइयो, तो बोले क्लब करिए, तो हम तुकर खादी खोलब और उकर नाम हाक से बाकी वो छोटा ही बेकर से इंडिया में है, वही रख में कॉफ़ी देते रहते ही, तो हम अपन प्रचार करें कि कौन ची हम रोध क्रश में करीला। और साँच के तो कन्हिया फ्राइवेल खर्च दाख रहा, तो हमें एक खौद स्पेल्ट मिला रोध क्रश की तरफ से कि हम उतना कार्यक्रम करीला। हम सबसे ज़्यादा करते थे बकरा लोग रहे 10 बरिस 20 बरिस में, हमारा कुछ कमती है नियर तक यार,
0: यानी कि 33 साल से आप और रोध क्रश
1: कुछ कमती कुछ कमती
0: 33 साल से आप।
1: 1 अप्रैल से हो गया जा,
0: 1 अप्रैल से
1: जी,
0: जो 33 साल हो जाएगा।
1: हाँ,
0: जो आप सहयोग दे रहे हैं, पर आप ना सिर्फ रोध क्रश के लिए काम करते हैं, आप भी काम करते हैं जो मिंदर जिसे जो फुटसल बैंक आदि उस सब में आप सहयोग देते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो आप उसके बारे में भी कुछ कहिए।
1: हाँ, हर हफ्ता हम लोग ऐसे पक करीला, तो अबे 1 महीना पाछे तो ऐसे 800 रहा, आज हम लोग पक किया, और हर हफ्ता ऐसे आवे 35 या 50, तो आज हम लोग पास पक किया 200 तख्तक। और एक लोप मांत में आवे है, तो हमारा काम रहा आज कौन ची हम धरत रहीन हमू तो भूल गई हर हफ्ता दूसरा ची रहे है। ओ हाँ, हम कोकस मेलक एक पाकी धरते थे, और एक आदमी चल गया तो हम वो ना रेड बीन्स बोतल में लाल जने ब्रांड बो ना वो के हम धरते थे, तो लोपन बांध में जा तो बड़ा स्नेह स्नेह चाहिए काम करे के। हाँ, हम एक के हिंदुस्तानी है वहाँ पर।
0: तो शिव जी, ये बात हो जाता है कि जैसे कि आप कहे कि 200 तख्त पकेते एक दिन, तो ये पूरा दनहाह के है या एक खदेलत दनहाह का?
1: नहीं नहीं, वो शनिवार के भी वो लोपन मांत आवे है और बृहस्पतिवार के, तो ये सब जो हम लोग पक कर देते हैं तो वो जाते हैं सगरों सग जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये हम लोग वातरेंग में करते हैं,
0: वातरिंगों में पाक होते हैं, तो फिर वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूशन।
1: हाँ, में जाते तब बेसवान ले जा सकरो धरे केरकी में और ऐसे ऐसे।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, यहाँ जैसे कि आप सुन रहे हैं कि हमारे लिए शायद ये एक छोटा सा बात होगा, पर शिव जी जो अपना सहयोग देते हैं, अपना सहयोग देते रहते हैं, और सभी प्रकार से जो फ्राई विलखर्स बान, और आज का मौसम तो कितना सुंदर मौसम है, बर्फ बाहर निकल रहा है, बाहर गिर रहा है, फिर भी यो इन्होंने अपना समय निकाल करके सेवा के लिए यहाँ स्टेशन में भी आप आकर के पहुँच गए, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता कि आप ऐसा व्यक्ति होए। वही मुत फोर व्हील फॉर नेम, आप एक फोर व्हील थे जो हमारे सभ्यता, हमारे सरनामी, हमारे हिंदुत्व के जो ऐसे यानी कि संदेश रखते हैं कि अपना योगदान सब चीज में देते रहते हैं। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, और गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: सुनने वालों, ये यहाँ पर यह कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो रखा जा रहा है, और ज्योति का प्रकाश में हर बार कोशिश किया जाता है कुछ रंग बिरंगी संदेश, जैसे कि आज राजेंद्र जी अपना संदेश रखे, बबली जी भी अपना संदेश दे रखे, और हमारे शिव जी जो अपना संदेश रखने वाले हैं अभी। तो शिव जी, आप कुछ ये संदेश जो आज रखने वाले हैं देनहाग के अंतर्गत, क्या संदेश है आपके ओर से?
1: देनहाग के अंदर यही है कि अभय ने हम एक जहाँ से आया, वो जहाँ पर स्टाच माकर सुपरदाम है, तो वो हम लोग से पूछे है कि देनहाग में जब फरांदर होई तो कौन ची अब लंग, तो हम लोग के इंस्परा कभी है, तो ओमन हम फ्राइवेलक भाग ले ला, और हम यही देख हिंदुस्तानी जो उनकी वहाँ हम जाइला, और ओमन बतावल जाए कि देनहाग में कैसे फरांदर कर सकीला हम लोगन।
0: यानी कि हमारे हिंदू भाइयों में से कोई भी इसमें सहयोग नहीं देते, आप ही सिर्फ
1: जी?
0: हाँ। और हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ आप अपनी ओर से रखते रहोगे, क्योंकि दत खातम अलखमीन बलांगना
1: जी जी जी,
0: अपना गांव, अपना गांव तो कहा जाता है, जैसे हाँ। कि हम अभी हाल ही में इंडिया में होकर आए ना
1: जी,
0: तो गांव जाकर के अब में से ज्यादा अब गांव निकल जाता
1: हाँ,
0: है
1: तो
0: पर
1: शहर
0: अपना है। शहर है, और हाँ। अपना शहर के कैसे वातावरण क्या कर सकते हैं उसमें सरकार, हम अपने अपने सर हाख नहीं से अपने, यानी कि अपने शहर के लोगों से राय लेते हैं कि कैसे उसमें और कुछ परिवर्तन आ सके ना।
1: हाँ, ओकरे विषय में यही बात है कि देनहाग जब इर रिक्त हो है ना, ओके जब इर रिक्त करल जाए तो चाहिए जाने के कि दूर शाम है बहुत बलंग रेख है कि हम लोग के नातूर देखिए। घोड़े लोगन ऐसे सोचे हैं कि ना कि आजे खाए पी के जब दोन कर दे, इस सब 20 बरिस आगे देखे है कि हम लोग के चाहिए पेड़ लगावे के, उ पेड़ में बीमारी ना हो जौने कि हम लोग के सुस्तफ हम लोग इन आदम कर सकीला, तो उ सब चीज़ पर इस सब बहुत ख्याल करे। और यहाँ पर बहुत गरीबता आई है, एक केरकी है वही दूर सामहित में हम सीखली ना कि एक मार्कस ना केरकी है या लविकलान में, वहाँ पर आदमी लोग के इतना गरीबता आई है कि वहाँ पर सबके उ देवे है के देकन कम्बर ना बोलल जा, हाँ कम्बल देवे है और खाई के भी देवे है,
0: ये सबके लिए अवेलेबल है।
1: याद बाकी वो सब चाहिए भाई आगे पूछे के जाने एक्सेल सर्विस पिंतु ना, वहाँ से वो सब देखी तो इनको में कैसे है तब ऐसे मिले, तो ऐसे ना कि सब कोई जाए के लाई सके। ये सब जहाँ जाइए तो ये सब में ज्ञान हो, और ये सब के कारण हम अभी जो चीज जानी ला, देखो हम इनर्सी कोच अभी इर्से इनर्सी कोच इन का नाम मूरबाइक में, या आपके सेफ सेंट्रल फरवान में के पाँच छः अल्मीनियम फोलिना है, तो और लेत लैम्प ना है, और इनर्सी बस पारंद दुष्कोप, तो ये सब चीज़ में खमें तो फ्री में देवे, ये सब इनर्सी बस पारन चीज़ है।
0: और जैसे कि ठंडी इस समय खूब ज़्यादा तादाद में है, तो सुनो वालों, यहाँ जो ये संदेश है जो हमारे नीदरलैंड का सरकार, जो देनहाग का सरकार जो हम सब के लिए तैयार करके हम सब के लिए रखने वाले हैं, तो शिव जी भी उसका अगर आपको जरूर इसमें सहयोग लेना है तो मालूमात कीजिए, ताकि आप जो सरकार औरों के लिए रखते हैं तो आप भी उसमें अपना और यानी कि माँ कर खबर इकफान।
1: हाँ, और खाली ना इनर्सी बस पारंत है धर ले, वो आए देखे एगो इनर्सी कोच आई तो देखी कि तोर जैसे कुलकास्त बहुत पुराना है या फ्रीसर, तो वो एगो चीज़ से मेहित करके देखी, वो बहुत स्ट्रोंग खबर करी, तो बोली ना ये एक तू बीगो ये बहुत स्ट्रोंग खबर करे, तू कहानी फ्रीसरों में कौन चीज हल ले, ओके बीक के एगो नवाला कीनो सब्सिडी मिलेगा अभी खमीन तक जो तो के उस ना रहेगा कैसे बोले वही फास्ट पास।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, इस बात इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हमारे घर में अब पुराना टेलीविजन है और पुराना आइसकास है, फ्रीजर है रखे हुए है जिसमें कुछ जो इस समय का चीज नहीं है, जो ज़्यादा तादाद में इनर्जी प्रयोग करते हैं, तो हमारा सरकार जो आपके लिए कुछ सब्सिडीज आदि तैयार करके रखे हुए है, तो ज़रूर उसमें और खोज कीजिए, और यहाँ फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम सब भी यही आशा रखते हैं कि आपके जो हमारा और वारवाई रेख तो फैब हम वो अपना रेख को और पा सके। तो क्यों ना एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने गंगा के किनारे, हमारे साथ जो तनहा शहर से जिसके पास काफी जानकारी होते हैं कि वत उनसे रेख्त सैन और एक वार माकन वाई ओक रेख्त ओप, तो भाई शिव जी जो यहाँ उपस्थित है और उनसे ये प्रश्न रखता हूँ कि जो हमारे शिव जी हमारे घर पे जो पुराना खटारा फ्रीजर है, कभी कभी आवाज़ उसमें से अलग सा निकलने लगता है और जो जिसके पास अभी जो मोटा टेलीविजन है तो उसे क्या सरकार उस पे भी कुछ सब्सिडी दे रहा है?
1: हाँ जरूर, देखो हम एक नंबर बोल सकी आगे वो जो जहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सके
0: जरूर
1: नंबर। हाँ वो जो का नाम है इनर्शी बस पारे के, तो ओकर लगे जब बेल करियो तो ऊ पठाई को इनर्शी कोच तो ऊ आई देखे आपके घर में कौन सी कमी है, कितना लेत लाम्प तो नौ दख है, कितना अल्मीनियम फोली वो नाप के लाई जाए तो के एगो दुष्कनोप दे जो इनर्शी बस पारन। अब वो सब बोलते हैं कि 3 मिनट चाहिए नहाए के, हम बोली नहीं इंडिया में तो सब एक के बल्टी में नहा सके। वो चीज़ अभी हम उस सबके सिखाई रहा कि देख तू लोग ऐसे ही इनर्शी बस पार कर सके, एक बल्टी में खाऊँ या मोई से करिए तभी नहा सके। हम तो नहाए ली हम जानी दूसर कोई के हम जाए ला संस्था में जहाँ पर तो औरत लोग तो बोले बोले आप बोले हम ऐसे ना नहा सके, हम बोली अच्छा तू लोग देखिए कैसे माँ हम तो नहा ली ला माँ खुद ना हम नमरवा बोली ना इफ का एक और वो नंबर है 06 लिखियो अच्छा 54392197 उसे भी कॉन्टैक्ट कर सके हमारा अभी कर सके तो वो इनर्शी कोच तो वो बहुत दृढ़ का बहना सब हर हफ्ता आवे है तो वो देख के और बहुत दृढ़ का सबके तो वो सब आएगा आपके घरे माया ने फाल वो सब अभी एगो मेतर से देखी तोर कुलकास कितना स्ट्रोम खबर करे तोर मास मशीन कितना खबर करे इस सब चीज़ खमेत दनहाक सब्सिडी करे कहे के कि हम लोगन सब कोई अपन इनर्शी बस पार कर सके मान अबे ऐन फानत यार फिक्सर एक नहीं आई अफ्रोम फोकंद यार तो खमेत दनहाक इस सब में बहुत मदद करते हैं तो हम लोग के चाहिए खबर मार कर करे के
0: सुनने वालों जैसे कि अभी आपने सुने शिव जी के ओर से और ये जो खमीनता हम सब के लिए और सब्सिडीज देते हैं तो जरूर मालूमात कीजिए और उनका लाभ उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यार आप रिकरिंग पे आप ही धड़ाक से गिर पड़े। हमारे साथ जो कार्यक्रम में सहयोग दिए और हम धीरे धीरे उस गीत की ओर बढ़ रहे हैं

बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को जो हमारी इस बात इतनी प्रकार से अपना मन लगा के अपना समय लगा के इतने हमारा साथ देते हैं सुनने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।

जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से

हाँ, हम तो फ्राइवी रखर्स काम में रहलिन, तो हम तनी देरी कैलिन, बाकी अच्छा जाऊन ची हमें शनिसार हम देलिन है, अब फिर से आगामी में हो पाई तो जौन जौन नवा नवा चीज़ हो तो हम फिर आए आप लोग के आए के बीच में फिर बोलेंगे। आप लोग के सबके नमस्कार हो।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में सहयोग देने वाले श्रीमान राजेंद्र सिंह जी भारत देश से, बबली आसरा जी, शिव किशुन सिंह जी और मैं हूं आपका सेवक संजय। आशा ये रखता हूं कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आपके पास पहुंचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

और इसी ट्यून से आप लोग को हम अपना समाचार को शुरुआत करेंगे। हमारे दोस्तों हम तुरंत चलते हैं अपना मत

दूर देश यहां से है, वो है हमारा सूरीनाम की ओर, हमारी प्यारी प्यारी जनता।

आप लोग जानते हैं दोस्तों, एनडीपी की रखेरिंग तो चल रहा है और एनडीपी का रखेरिंग जो चल रहा है तो यहाँ पर नवा यानी कि मिनिस्टर जो है वो है मिनिस्टर फन बैतला साख के अमो है भैया बउवा है जो एनडीपी में मिनिस्टर फन बैतला से साख है। तो बउवा यहाँ का बोले भैया, जितना आदमी दूसर देश गए है सन्नाम छोड़ के, जैसे हम लोग नीदरलैंड पे बाटी, ऐसे बहुत लोग अमेरिका भी चला गया, कोई कोई चल गया और देश में, मतलब ख्रोस्त देल सुरिनामर्स जो है तो वो सब नीदरलैंड चल आयल है। तो यहाँ पे बउवा बोले मिनिस्टर फन बैतलांड साख के, जितना आदमी दूसर देश गए है बोले है गांव बोले सबके बोले चाहे तुरख चली आवे के देश देशवा में सरनाम में बोले चाहे आ जाए के कि ही देशवा तुलन अब बहु कर। और मेलफिन बउवा बोले है बोले है गा बोले है गा अन बोले तुलन चल आओ बोले श्री नाम दी अफलूपन यारन बोले फर्श किलंदर ईदन से बैतलान गए है बोले सब के चाहे आए के हेल्प करे के श्री नाम अब बहु करे के बोले द वेंसवान सी दानास ओ खराक द तुरखेर फन परसून इन फन श्री नाम से अफकुम्स्त। तो बउवा बोले हे जितना आदमी बैतलान गए है बोले तुलो लौट के आओ बोले वांत इन द अफकलोपन फेफ तो तीन यार सैन एर होंदर द सेल्फ दैसन जो श्री नाम एन वन हो फरत्रोकन बोले बहुत आदमी चल गए है फेफ तो तीन यार ना भैया यहाँ फेफ तो तीन यार यहाँ पचासन वरिष्ठ आदमी देशवा छोड़ के चल गए है। और बोले ओम सैन खीन वेरक पेरसील ऑफ बोले वट एवर हडन बोले यहाँ काम ना ना रहा के घर द्वार ना रहा बोले उस सब पाँच और दस बरिस में लौट के चल मतलब चल गए है बैतलान में रहे बोले फील फन है बन नौक दो श्री नाम से ना चला ली ते एंड एक देंग दत दत में तो खुद आंसर एंड बलाइट एंड ख्रोध दिल फन दी मैं इंसान तुरख कान को मन श्री नाम से द बविस मान इन प्रोग्राम द कॉफी प्रात ऑफ द एस आर एस पे बोली से बोले सही लौटिया वे के वन फॉर प्लीस्टर्स एक सब देश छोड़ के भग गए भैया हुआ ठीक से काम धंधा ना है। तो बोले सबके चाहे चले आवे के और बोले यहाँ पे फनाइट दिया स्पोरा स्थिति से प्रोग्राम वर्धन खदराइट ओम बेन से दार तू तब वीखन बउवा बोले हेगा श्री नाम दी एली खाल इन बैतलान से ओम दस से देंक दस दार बीत लीफन है बोले ऊ भी लौट आओ ओम दंग से एली खाली तेज ओम दस से खेन होप सीन इन इट लान नीट इन बपाले रिक्टिंग सीन खान मार वनेर वा दात वेल इन सेट इन दार तू वेर कंदन से लन से कोमन एक प्रात नी फराल परसोनन फन श्री नाम से मेंसे die de grens over zijn bij Sint Maarten, Curaçao, Aruba, New York, België en alle andere Nederland, alle landen. Dus minister Boletero, sapkoe loud kiao, maar bhaiya, je ek denk dat mij deze chorde hen. Au ja, hij buitenland mee. अपन खलक खोजे कोई के सेती होएगी कोई के सेती ना भैल है खान से दूर फेख्त में से ओम हुन लीफ अब न्यू तो स्टार्ट अब तो बाव दूस द कांस ये एक वेल क्लाइन मनेर बउवा। मा खुद jij hebt een oproep gedaan, probeer die mensen ook goed daar te helpen. Op de kopen, ja, Suriname mee. स्कूल के लड़कन बड़ा जोर लड़े हैं मौसी है। बड़ी पढ़े ना जाए जैसे स्कूलिया में लड़ाई झगड़ा करे जाए भैया जो देखियो सोशल मीडिया पे तो तू देखियो कैसे सब लड़े हैं भाई सुरिनाम में। और इतना लड़े भाई सोशल मीडिया की देख अब लिखाई के बोले चार गो स्कूलीर और

लीवते 15-19 वर्ष के लड़कन हैगा जो एटफ्लिक में लड़त रहा। एगो हिया बतावे 13 वर्ष के लुंडा एगो 15 वर्ष के लड़की बहुत चटाई के भैया स्लाख्त ऑफर से और बोले ऑन द सुख भैले सिपाही लोन तब बोले एगो स्लाख्त ऑफर इन तेज सैन से लास्ट गफालन दूर लेनिंग फ्रॉम द स्कूल और बोले नार द आनलाइनिंग हिरफान बखाफ द सिस एग्जामन मेट एन फ्रीड नार स्कूल फॉर रिकर्स काम नार स्कूल ते सैन द सिस एन ए फीर फ्रीड डायरेक्ट आनगफालन दूर द बतरेफंड लेनिंग die daarbij ondersteuning kreeg van andere leerlingen. De 15 wijske lerke een oude doospurana jagra mee opbollen met de verdachte die haar zusje zou hebben belastig gevallen wat mogelijk heeft bijgedragen aan de escalatie. तो स्कूल के लड़कन भैया जब लड़े हैं तो बहरे के आदमी के समय स्टीन खोजे है और वो सबके आई के अपू का बोले है लड़वावे भैया ये बात है श्री नाम के बात है हमारी जनता। आप देखो तो लोन जानो हम लोग के देश जो नाच करी से बहुत कोई करी से माँ 3-4 गो एमा बंद रहा जैसे हम लोग के जो सबसे बड़का बंक सर नाम है सेंट्रल बंक के और जे पर रॉबर्ट फॉन ट्रिक जो हुआ करे भैया काम कर रहा बहुत बड़का पोजिशन रहा और हुआ पे चोरी चपाटी फ्रॉड कर ले रहा बंद रहा फिर छूट गए रहा। तो यहाँ बतावे हैं जो ट्रिक है भैया रॉबर्ट फॉन ट्रिक ओके कलिया कांतोन रेक्टर यहाँ बतावे हैं बोले हैं फॉर द रेक्टर फर्स्ट के इन स्ट्राफ सागवार इन वर्ड फॉर दाग फॉन फॉर द स्ट्रिंग द फॉर फॉलोइंग्स अम्तनार बोले हैगा फॉर्मेल फोर खदराखर रेक्टर लगे फरसोक की चीज युवा फिनो बहांदलिंग में जाए और ओएम बोले ट्रिक के फन ट्रिक के कि 1 मई 2019 तो दिसंबर 2019 में बोले हैगा हो दानखेत आज गवर्नर रहा और भैया कई महीना रहा वो गैला खाली चोरी करे सेंट्रल बैंक से 1 मई 2019 से दिसंबर में 6 महीना भैया और हम लोग के इतना इतना नाच करी से रिसवा के और गवर्नर स्कूल सौ हेबर खमाक आन अंदर अंदर फॉर डिस्टर करी से और एक बारे में सखुआ फिन फोर द रहते गए हैं और बोले ना द फरदाख्तर खाफ सुवेल ओकर और अमतना रहा राज लीडर जो ना इवन कन्हाई चंद्रा अलगू जो रहा उस अब राज ले थे एकर और बोले आन के वहुफ्ते थे है मन आने ढोरन फन खतोईगन और बोले है गाम फन ट्रेक आज खतोईगन रेस और फूरे कहोर दो डायरेक्टर कमिशारस इन एक रेक्लक फॉर अंडरसूक अलगू जोन हैगा भैया अन प्रोसीड्यूर पॉइंट नार फोरन बताई से बोले रेक्टर फरदेलिंग अस नोक अन कॉपी फन द एक्ट फन द आउटरेकिंग फन द डगफार्डिंग द फर्स्ट्रेकन द अपिकर सखवा कैसे जा भैया यहां बतावे है कांतोन रेक्टर मेरक्ट एक्टर ऑफ की बोले एक्ट में आउटरेकिंग में दोरवार्डर हेफ को निर्देश कि द फरदाख्त सो हेबर गवेगर्ड बोले फॉर द रेक्टर आवे के फन ट्रेक वेस्प्राक दे अ फॉरक्लार्ड की ओके ऑफ दैट मोमेंट बोले detentie verblijf komt te bolo ke chikungunya kaati se bolo ik mare voor de rechter alai waardoor hij geen stukken in ontvangst kon nemen hij gaf aan de doorwaarder te hebben verzocht de dagvaarding aan zijn raadslieden te overhandigen aur bolo ke doorwaarder geil oker ghar pe dagvaarding ke kagad dewe to bolo hum na ontvang kar li bolo hum dad hame chikungunya kaate re re bhaiya tu kavaliya khol ke dagvaarding o ke gachwa le lete to to ke chikungunya thoro bole ra ki na ये इतना तो तू ना जाए कि प्लाटा बाटे कि तुझको दफार्दिंग ना ले सके है तो इसब छछन है भाई तो इसब छछन त्रिक रेक्टर लोग के साथ करे हैं और रेक्टर लोग बोलेगा और रेक्टर लोग से बोली सेगा ये बोले हमारे एडवोकेट के तुलन जाओ दे दफार्दिंग द रेक्टर बसलोग द साथ आन तो हो दें तो मई टेन एंड द फरदाख्त नादर तो कुनन होरन और बोलेगा मोमेंटेल बोले सखवा दूर हो जा है
बोले 2019 में ये रहा गवर्नर रहा सेंट्रल बैंक में और अमतनार रहा और बोले बस्कुल्लक करी से फिनाशियल वन बहिर एंड स्ट्राफवार फैटन बिने द बैंक करी से और एमा बतावे गए हैगा पैसा चोरी फॉर जयस्टर करे रहा दरफोर वर्थे फॉर ओर देल एंड गफांगनिस आर बरिस के

तो दोस्तों और आगे को अपना हम प्रोग्राम लेकर और चलते हैं सुरिनामी न्यूज। दोस्तों दुई चिनुआ भैया दुई भाई है चिनुआ और ये दोनों भाई मर गए भाई। हाँ दुई गो चिनुआ मर गए भैया सबन ओके लाई से का बोले है सिकन हाइस में। तो दुई भाई मर गए है हमारे जनता बड़ी दुख के बात है। तो एकर बारे में अब सब खोजे है त्वेई लिंग ऊपर से दुई भाई रहा द्रियन त्वें तक यारख त्वेई लिंग्स ब्रूड जोन है। तो ये दोनों मर गए है भाई और ये बताए गए है शिनेस मानन श्री नाम से एमा दुई मिला एमा चार मिला पकड़ा है। और यहां बतावे एन देर तक मर्त के तुंड फिर शिनेस मानन फनाफ अन पंद अन काबले है मार्टिन लुथर किंग्स वेग में वानिका में गईल। तो बोले दोनों ट्वेलिंग और मर गए भैया यहां बताए गए है। साथ ही साथ दोस्तों चार मिला चार चिनुआ काम करत रहा पकड़ान तीनों एली खाल रहा इस सब के एको फरब्लाई फरखुनिंग न रहा फरब्लाई फरखुनिंग रहा चारों चिनुवन काम करत रहा चारों पकड़ाए गए है। मैं अब्बे सबन बतावे सब जो दोनों मरे देखो मोरताल बदराई फरा हुआ काम करत रहा। मैं अब्बे पता ना है कि ये चारों मारी से ओके ना एकर बारे में आगे जो कुछ पता मिलेगा हमारे जनता तो आपको हम जरूर जरूर से बताएंगे ये हमारा वादा है। तो भैया ओझाई देखो का करे है ओझाई का करे है। तो एक आदमी रहा भैया एक आदमी रहा वेंदवार रहा और बोले छुड़ी फूड़ी ले चलत रहा। तो ओकर माई बोले ई हमारा का बोले बोले त्रंस में आ जात रहा ये नमियान लुंडवा न कैनत बोले त्रांस में आ जाता बोले छुड़ी उड़ी लेके चलत रहा था। मायवा बोले हम जाई एक अच्छा करवाई एगो ओझा लगे भैया। ते ओझवा के नाम है यहाँ लिखल है भाई ओझवा के नाम बा दुमान दुमान भैया। ते ओकल लगे गए हाँ रितवेल काम करे बस उतरे में ई का बोले है फैफन देर तक यारख कैनत एस जो न त्रांस में आएंगे भैया त्रांस में आएंगे। बस ये का करी से जोन ओझवा रहा अख्तन फैफ तक यार के मारलोन लिया लिम बस ओही के लगल भोंके भैया ओझवे के मां ढाड़ी सनानी ओझवे के मां ढाड़ी भैया मारलोन लिया लिन के फैफ अंदर तक यार कहन जो रहा त्रांस में रहा और उजाई के ओझवे के भोंक भाग के मां ढाड़ी भैया। और यहां बतावे है कैन फॉर केयर द फॉलोअर्स नाम से पुलिस अलखर रहमतेत इन और फरवार्डर ट्रांसअक्तख तुस्तांत में रहा मैया ले गया रहा ओके ओझाई करवावे मारलोन लगे और मारलोन के फताल स्टिक फॉर मॉर्निंग मार ढाड़ी भैया बड़ी दुख के बात है। तो ओझा ओके मार ढाड़ी में पता ना वो कैसे वो रमिया त्रांस पे आवत रहा ही आना लिखल कि दृक्ष खबराई करत रहा कि कौन ची खबराई करत रहा दोस्तों लेकिन त्रांस में आए जात्रा भैया। तब मारलोन मर गए एक आदमी भैया यहाँ बताए गए है और भगल रहा कि कोई मन आन खाउदन और सिपाही एगो दूसर रोफर्स के पकड़त रहा और एगो दूसर आदमी गेला ओके बचावे कि ना पकड़ ओके बस ओ सिपाही पकड़ के बाकी में बिग देश भैया सा नाम के सिपाही सोमवार के बात है ये बात हुए सो न, सो सोहावन वेख के और बतावे गए है फॉल ट्रक ट्रक एक्स्ट्रा अंडा कि एगो औरत फिल्म करत रहा और बोले हम फेसबुक पे धर में इस चीज के बारे में बोले उतरे में बोले फॉर नोमन वॉर्ड द लेडन जो सिपाही रहा
een verdachte, ik wil verdachte ke achtervolg kertra. Het ging om PG, een oude bekende van de politie, Jane, beroeving per zware beroeving ook is koel toe achtervolg kertra. De achtervolging eindigde zo hun weg mee, waar PG door de RBT werd klemgereden. Auro Ego Duzar en Mioke Bachawatra tijdens de aanhouding zou een andere man zich met de politie optreden hebben bemoeid. Volgens de politie probeerde hij de arrestatie van PG te verhinderen. Auro Bolega de situatie te chor chor ke bachai na bhaiya. Bas sipahi uhuk uthai ke bam se baki bigi se bole tu bhi maar chal sange chal. Een vrouwelijke omstander filmde dit optreden en riep daarbij meerdere keren mo potenge tapa Facebook. Waarmee zij aangaf dat zij de beelden online wilde plaatsen. Volgens haar was de aanhouding aangehouden man onschuldig. Maar op de sipahi ke hinder kreeg op een kaam kreeg ke tab u Facebook kwap hai na ta kaise kreeg de ko bhaiya kalem is kaler ha ki jitra reis bureau hai sab ke chahega paisa bhare ke reis agenda ke bare mein to ekar bare mein chijwa for the commissie gail hai aur kalem krijg commissie for reis agenten niet direct van tafel maar rechter tik staat wel op de fingers. और यहाँ बताए तो KLM इतना हम लोग से पैसा लेवे अब रईस बिरो से भी पैसा ले तो रईस बिरो कैसे पैसा ले भैया जो रनमी बुक करे है KLM बोले सोमवार के volledig overwinning behaald in de zaak tegen de staat over de verplichte commissie van lokale reisagenten. De luchtvaartmaatschappij wilde dat de rechter het staatsbesluit 2007 mee direct zou opschorten en de commissiepresentatie op nul zou zetten. Maar zover ging de kantoorrechter niet. Daarmee blijft de regeling voorlopig gewoon van kracht. Luchtvaartmaatschappijen zijn dus nog steeds verplicht om een vaste commissie te bepalen aan de lokale reisagenten. Obole KLM wolle op een belangrijke punt wel gelijk. De rechter oordelen dat de staat jarenlang heeft nagelaten om de controle of het vastgestelde percentage nog wel past bij de huidige situatie. Toen ik KLM ke bare mein aap log ko hum bataye hain ki kya hua bhaiya. दोस्तों हम चलिए एगो बीरमान के भैया बीरमान सनमोए के ओर बाटी एगो बीरमान के सिपाही पकड़ के ले गए भैया न्यू सोरखवेख के बात है ओकर नाम बा भैया बैना में बतहोली ओकर नाम बा बतहोली ये हां ओकर नाम है 16 तारीख अप्रैल के न्यू सोरखवेख में के पकड़ी से और ई का कले भैया में सैंडल कले रहा फनीलिंग कले रहा बोले है साग बखन volgens een 68-jarige met een langer lopende conflict, purana jagda raha ego bromfis ke bare mein bole ga so worden gespoten bole bromwa spoiti huat bole kamwa na bhaila niet goed zijn voor de waar dan een mening verschil door de buurtbewoners werd en opgepakt और बताए गए है कमुआ ना मुई करे रहा तो बोले एक के पाई से को सुपर मार्क लगे तू इन द फरदख्त ऑफ ब्रोफिस पे रहा गैले ओकर लगे और फरक्लाने खमीन आन के बोले है द आन के फर गिंग दाना नर हुइस kort daarna zou Batholi bij zijn woning zijn verschenen en hem met een houten balk hebben aangevallen. Bolle balk zei ook maar eens, bhaiya, om erger voor te komen. Aure Jeremia bhagge op een ghar mee, kwaani bankalli ze. Bolle de verdachte zou vervolgens met de balk tegen de deur hebben geslagen. Daarbij werd onder meer het glazen raam naar zijn deur geraakt en werd de shutters vernield. Aure bolle oesabtje bhi toetge he. Aupar ze bolle hega open duwde en met de balk op hem afkwam, wist hij de slag te weren, maar liep hij toch verwonding op. Toen ik er maar een bichara ke hard word phul ge hai, muri phul ge hai, aur bole hega ukar kaak bhi toot ge hai, schaafwond aan de kin, aur bole da ook werd de kapotte shutters dat Jeremia vliegende mepper aangetroffen. De fiets van de aangever werd later teruggevonden op
op een leegstaande perceel op een keer fietsen te zijn gedemonteerd op een keer proces verbale bhaiya ab jaye hai so maar tu gale koi ke kamari kirki ture bhai aur ab tu ja ban ho ab dekho bhaiya ab phir sunan hai gagri rislan ke bare mein nps ke hum log ke iba isri naam ke vice president je karware bahut kamti suniyo ya likhal vice president is meester in het verleggen van accenten ya likhal oh ya pe bole vice president bole meester hai bhai verlegkerk van accenten zegt econoom Swami Girdhari secretaris van de vereniging Veske bole ga IBC me bole se reageer kar is vice president Gregory Ruslan ke bare mein op de tweede man van het land zei vorige week kibole raad van minister reactie kan is van analyse van Veske ki onmogelijk hij ga ki 8 maanden mee een regerende er wordt gesteld dat alle problemen opgelost zouden moeten zijn met name op het gebied van productie is hij er niet mee eens dat eens wordt beweerd dat de regering deze koers heeft verlaten to itradin met inderdaad kushkam na karise of VP bole hai bole jaren achter als het gaat om productie bole barise se productie mahila hai aap isa mange markusa bhe bhaiya aur isa ek dain boe raha NDP lon kasaba me khali moos daure hai fabric me sab da soi ge hai aur girdhari bole ruslan ke the plank volledig misbaar vest regering niet eens gevraagd om de problemen binnen 8 maanden op te lossen maar slecht gezegd heeft dat de regering na 8 maanden nog geen plan heeft. Una bolera ki to 8 maanden pe problemo oplos kariye. Maar vers bolle to ki ekko 8 maanden ekko plan na tu banayle bate. Ki kaise hem productie kar, kaise hem de swa samhar. Of vers bolle hem aan de orde heeft gesteld en hij heeft dat niet behandeld. Hij heeft een waarschuwing gebracht in het debat. De VP heeft aangekondigd dat hij de universiteit heeft gedoseerd en gewerkt heeft bij de internationale projecten bij het opzetten van landbouw. Toen hem toch op betek dek chukli bati kasava fabriek me koontje bhaile. Toen bhaiya girdhari ee baat bole hai. Toen aap log ke hem sunai deen hai. Hamare janta ki girdhari ee baat bole hai. Fes ke baare me. Hamare pyare pyare janta. हम जाई भैया असेंबली की ओर देना लेते गोक नामबा जरबंधन मफ्राव जरबंधन बोले सर्ख क्रिसिस इन द एसेट पेट asset P mee DNA leed Jarbanden vraagt aandacht aan de president oh rekerbare mee bole hai bole operatie uitgesteld risico's nemen toe asset pet makademie sikon huis mee bole bahu slecht hai DNA leed Amirani Jarbanden heeft formeel vragen gesteld aan de president Jennifer Simon mee ki nijpen tekort aan de essentiële medische apparatuur binnen de urologische zorg op een operatie uitgesteld risico nemen toe. Bolle 10 go kernvragen hega regering ze of de regering ze poochie ze bolle in haar schrijven gericht aan de president ke bolle welke acute maatregelen zal de regering treffen academisch ziekenhuis mee ke noodzakelijke apparatuur te voorzien bolle is de regering bereid om transparantie te bieden over de huidige staat van de medische apparatuur op welke stappen worden genomen op het afhankelijkheid van buitenlandse zorg te verminderen en patiënten lokaal tijdig de behandeling bolle doen buitenland te lopen he bolle kontje toe krijgen ki disuwe me bolle he behandel hui op bolle he ga kap doen apparatuur se ga bolle gap kap oper investeer hui te ikar bare me hem so chila misi kaba aur mooi janet hui mevrouw te tu apen collega de collega na hij minister he van een volksgezondheid oh he misi kaba ke chahi ikar bare me batawe ke ego Suriname karwa se bhaiya karwa sodan opgesloten jo no to dhove he o
के बन करी से सिपाही झगड़ा भैले 3 तारीख अप्रैल में दाखा रातवेख में वनिका में और वहाँ पे कर कारवास से भैया बोले वोर दे विसलिंग भैला स्लाख तो ऊपर बोले बेहतर बकैन आल गाँव गाँव को आदमी का नाम बा गाँव गाँव भैया तो गाँव गाँव से उसे झगड़ा भैले तो गाँव गाँव गाना ना गावे भैया ओकर नाम है बोले है सूख नाम द नाइल गोन ऑफ स्लाख तो फर्स्कोट दर बेवेर काम ook de drugsverslaafde is in de buikstreek geraakt en raakte hij zwaar gewoon. Bij slachtoffer werd ambulance natuurlijk gelegen. Na de skierpartij wist de verdachte afhankelijk te ontkomen, maar dankzij intensief opsporingswerk van de politie, de OK ze hebben pakken lezen. Hamari Janta. नीदरलैंड तोर हम जाले भैया करेग नेशनल पार्क पाएगा नेशनल पार्क पाएगा हॉलैंड से दैनन में एगो नेशनल ऑफिशियल नेशनल पार्क पाएगा मिनिस्टर येमी फॉर एसन नेचर के हेल्प नेचर के बाद नीदरलैंड के बाद बटियल सुइट हॉलैंड में बोले है क्या को नेशनल पार्क पाएगा मिनिस्टर फॉर मंगर के ये बात बोली से हमारी जनता तो हम बोली आप लोग को कुछ हम बैतलांड के न्यूज बताई साउथ कोरिया में भैया फर्स्ट लेडी जो बा एगो पुराना फर्स्ट लेडी रहा फॉर्मालक फर्स्ट लेडी रहा क्रेग बरूफान 4 यार सेल 4 बरिस ओके बन करी साउथ कोरिया के बात है फर्स्ट लेडी फान लेडी किम क्यून ही होकर बरूप करी सेगा फॉर करप्शी एर्डर क्रेग से 20 माह सेल अपगलेग मार दी स्ट्राफ इस नी फर हो 4 बरिस के जहल पाई से ससाउ का दोस वार अंदर टास एंड चैनल हैवन आनखनोमन फन ऑमस्ट्रीडन फरेनिकिंग स्कैरक दी बोवीकिंग वार दोस क्रिटिसी बस्क्रीवन आस एन सेक्टर एगो सेक्टर है एगो किरकी एके टास और कानी कौन ची दे रहा भैया और बोले वो एगो सेक्टर है गाओ केर किया दर नासाउ से बत्रोकन सेन खवेज बे बर्स मैनिपुलेशन इधर वेदर से नोक फ्रेय गस्प्रोकन एंड दैट फेट नास द गेवंगनिस क्रीग्ट 5 मिलियन बूटा पाइल हा एन क्लेने 30.000 यूरो डोर द एक्सिस फन अ किम इज ए वर्ट्राउन इन द ट्रांसपेरेंसी फन द स्टेट अंडर मेन सेग द रेक्टर और बोले है द बक्लागर द आनक्लागर दी 15 jaar hadden geëist, spanden het hoge beroep aan omdat ze de straf te laag vonden. Kim deed hetzelfde in de hoop voor de naammensen. De first lady is een ietsje bijl hem. Israël nieuwe evaluatie bij evacuatie verplaatsen in zuiden Libanon. De Israël ke urhem jaila Jeruzalem me. De Israël ke surjati bole nawa evacuatie bevel karise 16 plaatsen Libanon me. Bole weekend bevalt het burgers in het zuiden ook te evacueren naar eigen zeggen omdat Hezbollah zich niet aan de eerder gesloten bestand houdt. Da is a pin mange jai dage भैया और हुआ के 6 अने का बोले 16 प्लास से बोले तुलन यहां से चल जा जनता को बोले है वन उस बोले हिजबुल्ला बोले अपन अस्पराख ना हो वो करी से तो मुखले इजराइल फिर शुरू करी हिजबुल्ला के दागे के लिबनान में भैया द बर्कर फॉरन ऑफ खतराखन नर गebied ten zuiden van de staat Sidon te trekken zo is te zien op een kaart van de Israëlse leger. Ook daar werden de afgelopen tijden aanvallen uitgevoerd. Ook Israël en Libanon, Hezbollah. Ook de pro-Iraanse beweging die zowel politiek als militaire tak heeft in Libanon overhandelt de niet mee. Toen je wat is, hamare janta Israël ke bare mein. और आगे को अपना प्रोग्राम को हम आप लोग को सुनाएंगे और बताएंगे भैया रिसलांत में एक ओली रफनार दे रही है बहुत जबर आंख लगल हुआ भैया ब्रांड ना अनफॉल ऑपरेशन ओली रफनार दे तो आपसे में भैया वहां बहुत जबर आगे लगल है और बोले यूक्रेन से ड्रोन्स बोले हेवन ओली रफनार इन रिसलांत aangevallen waardoor een grote brand is ontstaan als dus de governor van de regio over de drone grijze Oekraïne Rusland met een barkijk tot deel ketra mahangai hai over de Rusland ke olie raffinaderij mee
और वहां पे गिराई के आगे लगे दिट लेडे तोत ओली लेक ऑफ सी एंड अ ब्रांडी दागन लंग नीट अंडर कंट्रोल वास बोले रफिनाटरी स्टेट अंडर कंट्रोल फॉर स्टेट बसरेज रोस नेफ में और बोले ओली प्रोडक्शन जो रहा फॉर एक्सपोर्ट बैतलान जात रहा बतावेगा सब रुक गए है ड्रोन अनफॉल भले 16 तारीख के और बोले है रूसलैंड ही वैयालक से प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑनगेयर 12 मिलियन तेल वहां से निकाले है उक्रेन ही से अनफॉल ऑफ रूसलैंड सिंस मार्च opgevoerd toen de Amerikaanse bemiddelingspoging stilkwamen te liggen wegens de oorlog met Iran. De gouverneur van de Oekraïne grenzende regio Belgorod meldt dinsdag dat ze met Iran gelarieerd hebben toen onderhandeld met Amerika en Rusland ze betekenen hoe stopzetten hoe je gaat toen iets joa op hoe op hoe ik maar is hij heel. एक गीत का आपको हम सुनाते हैं।

0: है कैसा है ये दीवाना दोस्तों रिमिक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं और हम आगे के बढ़ते हैं। जब ये लड़का दीवाना होता है तो पर्दा में क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है दोस्तों, आओ चला जाए इस सॉन्ग को हम सब प्यार से रेडियो के माध्यम से सुना जाए। ओनली रीमिक्स और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है आशा भोसले के साथ में।
1: पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा।

और दोस्तों आज हम आप लोग को एक और सुनाते हैं और बॉलीवुड ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग हम आपको फिर सुनाते हैं।

कर्म कहो किस्मत कहो, कर्म कहो किस्मत कहो, चाहे एक कहो तकदीर, पहले बना प्रभावत पीछे बना शरीर, कर्म के कटली रात के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा ही भरे, विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यही मरम, प्राण तेरे हाथ में प्राणी, तेरा अपना ही कर्म। सुनो वालों के सेवा से सादे से नमस्कार, मेरी यादव स्वराजी फाहून के प्रोग्राम में आज शनिवार, आज का दिन जो है शनिवार यूँ ही जबान से निकल गया ना, आज का दिन जो है मंगल सोमवार का दिन 4 तारीख 5 मई 2020 दोपहर के प्रोग्राम में तो आलोक मिनुतन ऊपर इन हो चला है हमारे साथियों, और ये कार्यक्रम जो है आज रवि सोमवार के प्रोग्राम है, तो प्रति सोमवार बुधवार और शुक्रवार को श्रीमान जो है आज के कार्यक्रम में और भाग लेता है, समाचार प्रस्तुत करता है दक्ष नीदलास भाषा में और आकर 3 और 4 के दरमियान, तो वो प्रोग्राम आप सुनेंगे और यहाँ से मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपकी सेवा करने जा रहा हूँ। हमारे साथियों प्रथम है जो बीमार लाचार है उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ प्रार्थना करें हैं परमपिता परमेश्वर से, नाते में घर पर और परिवार में जैसे भी हो, तो सहन शक्ति के लिए भगवान से आपके लिए प्रार्थना करें हैं और आपको सहन शक्ति प्रदान करें परमपिता परमेश्वर। कोई खुशी के दिन है, कोई के जन्मदिन है और जन्मदिन मनाते हैं लोग ने जैसे आपको मालूम है, तो जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं, लंबी आयु हो और आपके जीवन जो है स्वस्थ और सफल रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो आपके साथ है, हमारे साथियों और हमेशा आपके साथ ही रहता है। कुछ कहना है इसमें, कोई परिवर्तन लाना है, बताना हमेशा ज़रूर से बतला देना, क्योंकि ये रामायण नहीं है, गीता ग्रंथ हमारी नहीं है, और आप जानते हो इसमें परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं हम, क्योंकि और दिन पर दिन आई जैसे आप जानते हो तरक्की हो रहा है सारी संसार में, सृष्टि में, दुनिया में, तो इसी तरह से हमारे दोस्तों और इस वैसे तो प्रोग्राम हमारी भैया खा जाकर जो राजेश बदलू की होना ही चाहिए था, किसी खास वजह से ये कुलेखा जो है सहयोगी आज उपस्थित नहीं है, तो मैं आपका सेवक श्याम पूरन बैनकम कुम फरफंग हमारी साथियों, और एक होप कि जो जिन अंदाज में ये प्रोग्राम हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, हम नहीं मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, हम तक नहीं चाहिए ना, हम तक कहाँ तलक रहेगा, घमंड कहीं तक नहीं रहेगा दोस्तों, कहीं तक नहीं, और वो कभी नहीं करना फिर भी, और जो मैं जिन अंदाज में ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करूँगा आपको पसंद आएगा, कोई गलतियाँ हो जाए माफ़ कर देना, क्योंकि इंसान जो हूँ हमारे साथियों मैं कैसे ही खत्म हुई दाख फंदाख ने लगमोई वेर लेकर वेर, और दुनिया सृष्टि में आप जानते हो क्या से क्या न हो रहा है, और जंग छिड़ा हुआ है, खुशी और आपस में मिलकर बांटो, जिंदगी एक है जीते चलो, और आपस में प्यार मोहब्बत नाचो गाओ झूमो खुशियां मनाओ, और आपस में प्यार बांटते हुए आपस में काम आते लिए किसी के काम आना हमारी धर्म ही सिखाता है ना, तो इसी तरह से धर्म और अपने भाते चलो अपनी, और जो जिसके लिए आए हो धरती पर क्या वर्तिशमीसीस ऑफ दिस आर द बेस्ट मैं से हम आए हैं कुछ करने के लिए, और श्री पूज्य पर जो है हमारी संजय भगवंत और उनकी भ्राता दगेश भगवान श्री कृष्ण मंदिर के ये लोग भी यहाँ और सहयोग देते हैं, इन लोगों की तरफ से आपको एक शुभ दिन यूँ ही आपसे कह रहा हूँ। तो हमारे साथियों कुछ पल के लिए और मेरे साथ मिल के और कुछ घड़ी मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ, यही सोचते हुए कि आप मेरे साथ देंगे, हम सनातन धर्म के पालन करते हैं और सनातन धर्म के पालन करते हैं, सनातन धर्म देवी देवता को मानता जानता है, और हम तो जानते हैं जैसे आप, हम तो पत्थर को भी भगवान मानते, पत्थर हम पूते हैं दोस्तों हर एक को, और करत करते हैं पानी हवा पवन यह हर एक वस्तु जो है उसको हम कदर करते हैं, उनको हम और वो वार्ड देते हैं साथ, क्योंकि यही हमारी सनातन धर्म हम लोग के बतलाता है। तो हमारी प्रिय और साथियों दोस्तों हमारे मित्रों आज के कार्यक्रम में यहाँ से कुछ पल मेरे साथ मिलकर और गुनगुनाइए ना, मुझे पसंद है आपको पसंद है तो यूँ ही, नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं आज इतलू फिर कुछ पल आपके साथ मेरा सौभाग्य मैं देख लू क्योंकि दी डेथ मोमेंट फॉर मेरी लाइफ मैं मखदूर ब्रंग हमारे साथियों, तो चल के भैया चांद रघुनाथ

वीर हनुमान स्वामी बाबा हमारी सनातन धर्म के पालन करने वाले आपकी मनोकामना जाकर पूर्ण हो और आप भजन भक्ति करो इंसान के नाते जो आपको कर्तव्य है करते रहो धर्म के प्रचार करें और किसी का काम आते चलो यही सनातन धर्म जो सिखाता है ना और अपना कर्म के लिए अपना कार्य कार्य करते चलो अपना खुश सही सुकर्म करते चलो अवश्य आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो हमारे प्रिय और साथियों फिर पूर हल्फ तुवे हो चला है तीन और चार के दरमियान श्रीमान रोमियो होस्ट आपके लिए समाचार प्रस्तुत करेंगे लाइव इसी रेडियो के माध्यम से और अभी तो मैं कुछ संगीत हम आपके लिए पेश कर रहा हूँ और कोशिश है अभी एक भारत से एक भैया से भारत जो तीत हो रहा था और आज वहाँ पे भी चुनाव रहा बंगाल वेस्ट बंगाल में हाँ तो वहाँ पे जीत हुआ है BJP की मोदी जी की पार्टी के जीत हुआ है बधाइयाँ शुभकामनाएँ मेरे अपने तरफ से उन लोगों को देता हूँ और फूलों फलों यही तो कहना है हमारे साथियों ये सृष्टि है दुनिया है ना हम जहाँ रहते हैं आकर सही और गलत उसको हम लोग के एहसास ज़रूर है एहसास ज़रूर हम जानते हैं और जो अब सही करते हो तो सही करो गलत करते हो तो गलत करो जानबूझ के है ज्ञान है बुद्धि है तो मेरा और संदेश यही है कि आप सही करते चलो और किसी के काम आते चलो हमारी साथियों हमारे मित्रों

आपसे कहा हमारी साथियों, और ये फाहुन इंसानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हो, और ये पल ये घड़ी ना ब्लेस यू अफगस्टैम्प्ट ब्लेस यू अफगस्टैम्प्ट अब यू रेडियो सेंडर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटे लगातार आपके लिए प्रस्तुत जो किया जाता है लाइव ना।

मेलोडी क्वीन लता जी। हाँ हाँ सुरों की देवी।

0: ये खास नंबर जो है पसंद किया है।
1: आसमान है चलती
0: सुपुत्र बेटा जसवीर पूरन
1: पर फिर क्यों मुझको लगता है।
0: हाँ, जसवीर के पसंद है, उनकी फेवरेट सॉन्ग है हमारे साथियों।

वाह वाह कलाकार, प्रार्थक है ऑन स्टेरफ्लेक, नेट व्यूवेल, एक नेट व्यूवेल बेस्ट लाइसनर्स संगीत में

आवाज के बारे में आपको क्या कहना है? यही तो है फाहुन हमारे साथियों।

अब इस पल में मैं आपसे क्या कहूँ, वो रूठ गए मेरे अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरे अंदाज जो जाकर देखकर बदल गए, मेरे जज्बात देखकर हजारों टुकड़े किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े हर टुकड़े, हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। दोस्तों,

बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर, हाँ हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तो कोई टूट गया है, तेरे रूठ जाने से ना।

हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है।

क्रिकेट का यही सबक है कि किसी में हद से ज्यादा घुलोगे मिलोगे तो टूट जाओ।

0: तो इसीलिए तो कहता हूँ कि सूरज से कहो रोशनी देना छोड़ दे, सितारों से कहो टिमटिमाना छोड़ दे, अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी यादों से कहो हमें सताना छोड़ दे। हमारी साथियों त्वे ऊपर त्वे हो चला है और 3 और 4 के दरमियान आज के कार्यक्रम में सुनेंगे आप रोमी होस के जरिए से समाचार, देश विदेश के समाचार नीलांत दक्ष भाषा में। और वैसे तो जैसे आपको मालूम है हमारी कुलेखा रजेश बदलू ये प्रोग्राम प्रस्तुत करता है और किसी खास वजह से आज वो प्रस्तुत नहीं है तो उनकी प्रोग्राम मैं अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही सोचते हुए कि आपको पसंद आता हुआ होगा। कुछ गलतियाँ हो जाए अशुभलीफ माफ कर देना हमारी दास साथियों। और जो है यहाँ समय हो चला, थोड़ा विलंब हो गया ना, ओके, मैं फिर भी होता ही रहता है और कार्य तो होता है, चाहे समय से करना चाहिए। फिर भी
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है

सोचता ही रहता हूँ क्या मैं कहूँ आपसे, ये ज़िंदगी है ना साथियों, ज़िंदगी जो हम जीते हैं आप इसमें मिलके, और हर एक पल ज़िंदगी जो है ये अद्वैत फरासिंग सुबाशुदत बीत आलतेत फरासिंग, क्या होना भविष्य में हम नहीं जानते हैं। तो हमारी साथियों ये फाहुन के प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ख्याल जब उन्हें मेरा आया होगा, मेरी याद ने उनको सताया होगा, भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, हाँ भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, कैसे उन्होंने हमें भुलाया होगा।

एक दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी की होते गए।

वाह रे वाह, बदले बदले से लगते हो। हाँ हाँ, बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे है या किसी और से मुलाकात हो गई? हाँ।

कलाकार तो अपनी अपनी जगह होते न, आप ही से कहता हूँ कि तुझको अपनी रूह में उतार लूँ मैं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में और सा कुछ और चीज, बस एक तू मिल जाए, एक तू मिल जाए तो अपनी जिंदगी गुजार लूँ मैं साथियों और।

0: बड़ी मुश्किल है
1: बिना जाना है कहाँ।
0: भी का प्यार का समां बता दे तुझे जाना है कहाँ।
2: दखल ना करें, सबकी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, कृपया नकल ना करें।
3: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: साथियों, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाना है, छूट जाते हैं। और जो करीब होते हैं हमारे प्रिय और दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहुन
1: ये बता दे तुझे
0: हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चून हो, परमाश्री मोहम्मद रफी साहेब, शमशाद बेगम, इन दोनों की आवाजों में यू ही कहता हूं मैं, उन स्टेर फलक है।

यूं ही आपसे ये कहता चलूं इस घड़ी इस पल हमारी साथियों। और आज के कार्यक्रम में यहाँ तक कि ये नंबर हम आपके लिए प्रस्तुत किए, यही सोचते हुए कि आपको पसंद आया हुआ होगा। आपको एक शुभ शाम है। तो 24 जो हो चला है 24 जो से द्री फिर कौन है हमारे साथियों, और रोमियो होसी समाचार दक्ष भाषा में नीलांस में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, जो प्रति सप्ताह में 3 शाम को त्रिशद्री और फिर आपके लिए प्रस्तुत करता है। प्रोग्राम तो हमारी कुलेखा भैया राजेश बदलूले और चलाता है, आज किसी खास वजह से आज नहीं है, तो मैं उनकी प्रोग्राम जो जाकर आपके जो है लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़रा से ये मैं आपको भी बतलाना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में, ये जो शाम है हमारी साथियों और शाम के प्रोग्राम है, शाम कहाँ दोपहर है अभी, मतलब दोपहर है, दोपहर के प्रोग्राम और नेहे 3:04 हो चला है और तारीख है 4 May 2020। दोस्तों पलकों में आंसू और दिल में दर्द रोया, हंसने वालों को क्या पता हंसने वालों को क्या पता रोने वाला जो है किस कदर रोया, तेरी तन्हाई का आलम वही जान सकता है, हाँ हाँ तेरी तन्हाई के आलम वही जान सकता है जिसने जिंदगी में किसी को पाने से पहले खो दिया। हमारे प्रिय साथियों फाहुन रेडियो के प्रोग्राम आप सुन रहे, मैं आपका सेवक श्याम पूरन भी आपके साथ जो दे रहा हूँ, और यही सोचते हुए कि दिन अंदाज में ये कार्यक्रम मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पसंद आता हुआ होगा। इसमें आपको कुछ परिवर्तन जो लगता है क्या लाना है तो यूं ही हमेशा आप बतला सकते हो। हमारे प्रिय मित्रों फाहुन के शाम है, शाम मानदा के और फिर 4 May के प्रोग्राम आप सुन रहे हो। इस बार कुछ संगीत जो हम आपके लिए पेश कर रहा हूँ हाँ तो यहाँ ये नंबर जो है आपके लिए चलाने जा रहा हूँ, और अभी कुछ घड़ी के अंदर में समाचार आप सेवन करेंगे।

Ja, beste oude satio. Het is 8 minuten voor 3, wat zal hij? Doe per program, zomaar kadine, jaar tarik 4, mei 2026. अब अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपके साथ दे रहा हूँ, यूं ही मैं आपसे बतला दूं। वैसे तो कार्यक्रम ये जो है हमारी कुली का सहयोगी जो है रजेश बदलू जी के जरिए से प्रस्तुत होता है, किसी खास वजह से आज उपस्थित नहीं है, तो अपने अंदाज में ये प्रोग्राम मैं आपके लिए चला रहा हूँ। यही सोचता हूँ कि आपको पसंद आता हुआ होगा, कुछ गलतियाँ हो जाए तो माफ कर देना बेस्ट और साथियों, ये बार बार मैं कहता हूँ। और कार्यक्रम फाहुन 24 घंटे लगातार आप सुन सकते हो, सारी जहान में, ये सृष्टि में, दुनिया में, हर एक जगह, वो भी इंटरनेट के जरिए से।

0: सातवें आसमान पर पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है।
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahun.
2: Digitaal radio, internet fahunfm.nl.

3 uur, beste luisteraars. Zeg maar, is dat joh? Een fijne middag, hè? Je zin daar ik grie pal. Haha, zin ik me verder niet aega. Geniet ervan. Elke seconde. Zin ik je milta hai. मजा देने के लिए ना, जहां तक हो सके जो तकदीर में लिखा होता है फिर भी कर्म करना चाहिए, कर्म करो, जिंदगी जीते चलो आपस में मिल के प्यार में, वासुदेव कुटुंबकम, जैसे आप जानते हो ना, हम सब एक परिवार है सारी सृष्टि में दुनिया में, यही हमारी धर्म सिखाता है, अहिंसा परम धर्म, निमन पेनख, नोक मैं तो वोट नोक मैं दाद बेस में से सर्व भवंतु सुखिना, सुन रहे हो, जानते हो ना, यही हमारी धर्म सिखाता है परंपरा, यही सभी हो आपको एक शुभ शाम, शाम कहां दोपहर के प्रोग्राम में आप सुन रहे हो, और अभी कुछ घड़ी के अंदर में श्रीमान रोमेयो होस्ट न्यूज दाता समाचार दाता अभी सुनाएंगे नीदरलैंड्स में, Maandag, woensdag of vrijdag komen. Dus 3-4. Haha, kijk, kijk, kijk. Aad, zo mooi, kadin, hè? Komtje bari, hè? Om in te zaal kunnen gaan, is het ook goed zangiet, hè? Maar ik wil je prestut kunnen gaan. Over een begin, host. In te zaal mee. Goed gari, goed spel, goed zangiet. मेरे तरफ से यह कहना है, हर को जो प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां भी आप हो खुशहाल रहो, वेश फुर सख्त पास खुद ऑफिसल भैया दिल पर रामा दीन जी, या

0: एक आभूषण की तरह। हाँ साथियों, ये संगीत जो है मधुर संगीत,
1: चमक में है गर्व तकले चांदार तारे।
0: आज एक कार्यक्रम में आप ही के नाम यातायात में आप हो बैतूल फिर

और ये फिर से एक बार वही दोनों सुरों की देवी लता जी बादशाह के बादशाह सातों सुरों के बादशाह पद्माश्री मोहम्मद रफी साहेब।

आपके लिए कार्यक्रम लाइव प्रस्तुत किया जा रहा है और आपको कुछ कहना है अवश्य आप तार कर सकते हो, चाहते हो आप तब न जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो।

दारू की बोतल में साहेब पानी भरता है, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

0: Ja, beste luisteraars, het is wachten op de heer Romeo Hoost. Tussen kwart over oude drie hoedje lachen.
1: शीशी ये कितने करता ऐसा काहे को होता शीशी ये कितने करता
0: ऐसा तो सही ने
1: एक लेजेंड माइकल को रात
0: कमाना पूजा को फ्राइडा को से ड्रिफिर श्रीमान रोमेगो हो सकता प्रोग्राम जो प्रस्तुत करते हैं
1: मैं कहना माइकल का
0: समाचार
1: दंगा
0: जाता है
1: अब जाएगा ला ला ला ला ला है

शहर में है चोर बड़े, जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े, अपने व्यवस्थाद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

0: का पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है गोयू इस पैसे पे मरता है, फिर मैं कहना माइकल दारू
1: की शोदा की आवाज है साथियों।
0: अब चल जाए
1: आ 3 मिनट ऊपर ग्री हो चला है,
0: अब चल जाए
1: में इंतजार करे वो भैया जो रोमियो होस और आकर न्यूज दाता है समाचार दाता है नीलास में कर आपके लिए समाचार प्रस्तुत करते हैं मांदा हुआ और फ्रेडा को या और हमारे साथियों प्रोग्राम फाहुन की शाम धीरे धीरे हो रहा है और घड़ी की तरफ मैंने आपसे बताया नहीं कि 3 मिनट ऊपर देरी हो चला है।
2: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: What?
4: My name is Anthony Gonsalves.
3: Gonsalves?
4: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी
2: हिट स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। हमारे ये दोस्तों क्या साथियों,
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द
2: फाइनल मिडक है
1: is just
2: 22 minuten over jo ho chala hai 3
1: of the atmospheric pressure in the country.
2: मैं जो देख रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी के कमाल प्रवीण बाबी स्टारकास्ट इस फिल्म की अमर अकबर और एंटनी

0: तो हमारे साथियों, यहाँ तक आप सुने ये प्रवचन, आज का दिन ये शुभ संदेश, और जाकर जो हमारी श्रीमती और पंडिता साहिबदीन राम खिलावन से, और जाकर आज के खनेराज से जो है और सुनते और इतना सहल रूप में समझाए बतलाए, तो जाकर ज़रूर अपने काम में लाएंगे और मैं बाल बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे बतलाएंगे। अल के साथ रख जो उनकी प्रवचन हो रहा है, ये दूसरा था हमारे साथियों, एंड हर हाल इन तो आपसे अवश्य सुनेंगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। खंड मोहिदा एक शुभ दिन सुप्रभात देवी जी।
1: पहुंचा होता है तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है,
2: वक्त और कदर दोनों बड़ी अजीब चीज है। जिनकी कदर करो वो तुम्हें वक्त नहीं देते, और जिसको वक्त दो वो तुम्हारी कदर नहीं करता। झुकने से अगर रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ, वरना एक दिन तुम्हें वक्त से या जमाने से शिकायत नहीं होगी बल्कि खुद से होगी कि हमारी तो जिंदगी सामने थी और हम दुनिया में उलझे रह गए। जिंदगी में ये कभी मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस ये सोचो कि वो जाते जाते तुम्हें क्या सिखा गया, यही तुम्हारे काम आएगा। और मेरी एक बात याद रखना कि वक्त किसी को भी उतना ही दो जितनी उसे जरूरत हो, अगर ज्यादा दिया तो ना तुम्हारे वक्त की कदर होगी ना तुम्हारी। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो रिश्ते खुद खत्म नहीं करते बल्कि तुम्हारे लिए ऐसे हालात बना देते हैं कि तुम खुद ही उन रिश्तों को खत्म कर दो ताकि वो तुम्हें कसूरवार ठहरा सके।
3: धरती से चांद की दूरी लगभग 384,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वही अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर ये मानकर चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्जा मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसान ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा और ये पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मानव मूत्र और उल्टियां है। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की ना मौजूदगी के कारण वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं गड्ढे हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं और हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है जो कि 3 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करता हूँ। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं? लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है, चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुँच पाएगी।
4: जिंदगी के 5 कड़वे सच, जो कड़वे तो लगेंगे लेकिन है सच्चे। नंबर 1, माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई बिना मतलब के साथ नहीं देता। जब तक काम है तब तक साथ, वरना रास्ता अलग। नंबर 2, अच्छे इंसान को नहीं दिखावे वाले को ज्यादा इज्जत मिलती है। सच बोलने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। नंबर 3, इंसान की नहीं उसकी जेब में पड़े पैसों की इज्जत होती है। गरीब चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई पूछता तक नहीं। नंबर 4, जिसे सबसे ज्यादा चाहोगे वही एक दिन सबसे बड़ा दर्द देगा। नंबर 5, रिश्ते नाते भी मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक अपनापन, वरना पहचान

De Melody Queen, Letta G.

0: ये खास नंबर जो है पसंद किया है।
1: आसमान है चलती
0: सुपुत्र बेटा जसवीर पूरन।
1: फिर क्यों मुझको लगता है।
0: हाँ, जसवीर के पसंद है, उनकी फेवरेट सॉन्ग है हमारे साथियों।

वाह वाह कलाकार, प्रार्थक है ऑन स्टरफ्लेक, नेट ए व्हील, एक्ट नेट ए व्हील, बेस्ट लाइसनर्स संगीत में

आवाज के बारे में आपको क्या कहना है? यही तो है फाहुन, अमन साथियों।

इस पल में मैं आपसे क्या कहूँ, वो रूठ गए मेरे अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरे अंदाज जो जाकर देखकर बदल गए, मेरे जज्बात देखकर हजारों टुकड़े किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही और खुद ही रो पड़े हर टुकड़े, हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। दोस्तों,

बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर, हाँ हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तो कोई टूट गया है, तेरे रूठ जाने से ना।

सबके चेहरे याद रखता है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है।

इसीलिए तो कहता हूँ कि सूरज से कहो रोशनी देना छोड़ दे, सितारों से कहो टिमटिमाना छोड़ दे, अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी यादों से कहो हमें सताना छोड़ दे। साथियों, ये फाहुन के प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ख्याल जब उन्हें मेरा आया होगा, मेरी याद ने उनको सताया होगा, भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, हाँ भूल ना पाए जिन्हें हम आज तक, कैसे उन्होंने हमें भुलाया होगा।

के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी की होते गए।

0: वाह रे वाह,
1: बदले बदले से लगते हो। हाँ हाँ, बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे है या किसी और से मुलाकात हो गई?

कलाकार तो अपनी अपनी जगह होते ना, आप ही से कहता हूं कि तुझको अपनी रूह में उतार लूं मैं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूं मैं। नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में और सा कुछ और चीज, बस एक तू मिल जाए, एक तू मिल जाए तो अपनी जिंदगी गुजार लूं मैं साथी।

0: साथियों, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाना है, छूट जाते हैं। और जो करीब होते हैं हमारे प्रिय और दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहुन
1: ये बता दे तुझे
0: हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चून हो, परमाश्री मोहम्मद रफी साहब, शमशाद बेगम, इन दोनों की आवाजों में यू ही कहता हूं मैं ऑन स्टेर फलक है।

इसीलिए मैं कह डालू इस वक्त जो है हिम्मत करके, तेरी मोहब्बत में भी न जाने कितने फसाने हैं। बार बार ठुकराया तूने मुझे, बेशरम हम भी, हाँ बेशरम हम भी, फिर भी तेरे दीवाने हैं।

आपके साथ जो मिल रहा है इतना सुकून मिलता है इस घड़ी में, इस पल में जो आपके साथ बीत रहा है ना। कहता हूँ और ये जो अर्ज आप ही से है, रोज रोज तेरा इंतज़ार होता है अजनबी जी, रोज तेरा इंतज़ार होता है, रोज ये दिल बेकरार होता है। काश कि तुम समझ सकती कि चुप रहने वालों को भी किसी से प्यार होता है, ये जानते रहना कभी मत भूलना। और हमारे भाई जॉन मोकमसिम डंकवेल, और ये तो महान कलाकार इस देश की, हर कोई ये नाम जानते हैं, और आज के प्रोग्राम में साथ दे रहा है हमारे भाई जॉन मोकमसिम जी, उन्हीं के नाम से।

0: वाह वाह।
1: जो मैं पी के पास गए,
0: जरा से मैं आपको ये सुना दूं, जरूर से सुनाने वाला हूं, लेकिन आप ये जान लो कि खामोशी से मतलब नहीं, मतलब बातों से है। दिन तो गुजर जाता है, मसला तो रातों से है ना। और वो कैसे गुजरता है कौन जानता है।

0: वाह रे वाह, आप ही की तारीफ करते हुए और कलाकार जो अपने अपने जगह होते हैं ना।
1: अब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, ऐसा ही है इश्क़।

0: शुक्रिया। हद अनहद की बात होने लगी है, कैसी है देखिए। और हमारे पंजाब के बहुत मशहूर सूफी संत हुए हैं जिन्होंने नाच के अपने मुर्शिद को मनाया, बाबा बुल्ले शाह जी का।
1: लाइव रिकॉर्डिंग, हाँ महफिल सजा हुआ है।

शेर शायरी सीखा हूँ इसे कभी कभी कहता हूँ कि शायर की मोहब्बत होना ख़राब नहीं होता दोस्तों, शायर की मोहब्बत होना ख़राब नहीं होता, तुम्हारे सिवा पूरा एक ख्वाब नहीं होता। इराने जी कभी आंखें भी देख लिया करो, अजनबी कभी आंखें भी देख लिया करो, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर वक्त बातों में सही जवाब नहीं होता। हमारी बेस्ट और लविस्तार से प्रोग्राम पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कहना है।

और यूं ही आपसे ये कहता हूँ कि दो चीज़ें जो है, दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। हमारी और बेस्ट वाहन की सुनने वालों,

वाह रे वाह कलाकार, उनकी जो है कैसे तारीफ करें। यूं ही हमेशा मैं कहता हूँ कलाकार की तारीफ तो चाहिए करने के लिए, तालियां वही चाहता है कलाकार, उसी से खुश रहता है। और जो है संगीत हम तो सब पसंद करते हैं। महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है ना, महफिल ना सही तन्हाई तो मिलती है, मिलन ना सही जुदाई तो मिलती है। कौन कहता है कि प्यार में कुछ नहीं मिलता, वफा नहीं या वफा ना सही बेवफाई तो मिलती है। हमारी और बेस्ट मेंशन पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन, हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन, और यहाँ पर बयान करते हैं

0: ये खास खास नंबर आपके लिए और बहुत प्यार के साथ हमारी बेस्ट सुनने वालों पावन के जो ट्यून है इस वक्त जो है आपको और पल घड़ी जो है जिंदगी के अच्छे से बीते, जबकि संगीत हम आपके लिए कुछ प्रस्तुत करें खास कार्यक्रम यहाँ से सुनाम तक लोग जो प्रोग्राम सुनते हैं तारीफ करते हैं उन लोगों को मैं हृदय से फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे भाई छोटा भैया जो है खास करके देव प्रकाश पूरन कार्यक्रम भी सुन रहे, सुना में माता श्री श्रीमती भी सुन दी और बलदेव खास करके जो है अपनी माँ के पास उपस्थित होकर और जो है साथ उनकी सेवा सत्कार जो करता है सुपुत्र होने के कारण ऐसा ही चाहिए ना अपनी जिंदगी में जो है और अपना जहाँ तक अवसर मिले ये कार्य कर सकते हैं अपने माता पिता के किसी काम आने के लिए, इसीलिए माँ बाप पिता जो है अपने सुपुत्र सुपुत्री को और ख़ास करके जन्म देती है जाकर जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वही काम आते हैं बेटा बेटी जितने परिवार होता है। मैं इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी है माता श्री सुनाम है और वहाँ पर उपस्थित है हमारे भैया देव प्रकाश पूरन जी, आज उनकी बारी है माँ की सेवा करने के लिए। तो उन्हीं के नाम हमारी भैया देव के नाम आज के कार्यक्रम में जो है एक और जो यहाँ से मैं खास करके प्रस्तुत जो करने जा वाला हूँ एक संगीत यानी कि ढूंढ रहा हूँ और उनकी पसंद होता है जो दोस्तों अपने अपनी अपनी पसंद तो हर एक कोई को होता है ना और देव के अलहदा पसंद है उनकी हमेशा जो रहते होता है और पसंद है। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुपते हैं ना कि फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ क्या वाकई हम इतने ही बुरे हैं, नहीं तो देव याद नहीं तो और आप ही के नाम से ये खास नंबर जो है माता श्री के मेरे तरफ से और अपना शीश नवाए के दोनों हाथ जोड़ के पालगी करते हैं ना देव प्रकाश पूरन राजा।
1: ओ हो हो हो
0: दे हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी

और मुकेश जी की आवाज में ये नंबर को सुने, और हमारे भैया नाम जो है राजा देव देव प्रकाश पूरन उन्हीं के नाम से आज के कार्यक्रम में बहुत ही प्यार के साथ वो कहते हैं अपनी माँ की सेवा सत्कार करते हैं सब कोई बारी बारी जाकर, भाई बहन जितने हैं दोस्तों, माँ ये शब्द माता जो है माँ, कितना भी लिखूं उसके लिए कम है। जब लिखते हैं लिखो, कितना लिखो, लिखना चाहते हो, ये माँ की है उनकी प्यार जो होता है ना, माँ कितना भी लिखूं उसके लिए कम है। सच ये है कि माँ तो माँ है तो हम है दोस्तों, माँ तो माँ है और जगह माँ है तो हम है, माँ नहीं तो हम नहीं दोस्तों, यही है आज के कार्यक्रम में। और हमारे प्यारे भैया खास करके देव प्रकाश पूरन के नाम और ये नगमा ये गीत आप श्रवण किए, प्रोग्राम फाहुन की आप सुन रहे हो। और इस बार

हाँ, तो हमारी प्रिय और बेस्ट इसराइल से प्रोग्राम में खास सिलेक्शन और आपके लिए प्रस्तुत करेगा। गाने वाले आवाज आपके जाने पहचाने आवाज है, दो है इसमें से, दो है खास करके बादशाहों के बादशाह सात उसूर के बादशाह पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहेब और सुरों की देवी यानी कि द मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। इन दोनों की आवाजों में ये नंबर आप श्रवण किए। आगे के कार्यक्रम में इस बार नंबर जो हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे तो वही कहते हैं मिकी, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में, माँ के गोर के नीचे, खास करके वहीं पे स्वर्ग है दोस्तों। अरे कोई जो है कहीं से, कहाँ से आए हो आप, कहीं से वही माँ से आए हो, और माँ के इज्जत हमेशा करते रहना जहाँ तक हो सके। और आज जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मेरे भैया जो है छोटा भाई देव प्रकाश पूरन वहाँ माँ के पास उपस्थित है चुनाव में और उनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएँ देते हैं। श्रीमती विसुंदेई बलदेव पूरन है ना दोस्तों, खास करके आज के कार्यक्रम में उनकी मैं अपनी याद कर रहा हूँ कि मेरी माता श्री है, सभी भाई बहन जो जाए, खास करके वती हिसला गीता शरीता गीता के जन्मदिन कल था, बधाइयाँ फिर से देते हैं। और देव रामोन देव शोभा संजय और एक भाई ये खास करके सब मिलकर बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। देवा भैया की देव कार्य करते रहना, अपना कार्य यही जिंदगी है, जिंदगी में जो आप करेंगे सु कार्य अच्छा कार्य करेंगे वही साथ आपके जाएगा, पैसा लत्ता और खास करके पैसा कपड़ा लत्ता ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा दोस्तों। घर द्वार जितने आप खास करके जिंदगी भर जोगा जोगा कर रखे हो, सोचते हो कि आपके नहीं कुछ नहीं, सुकार्य करते रहो, आपस में प्यार करते रहो और जहाँ तक आपके ज्ञान है बुद्धि है अच्छा ही करिए, कार्य करते रहो। माता पिता जो है वो आपके जन्म दिया है, उनकी सेवा सत्कार करते रहना जहाँ तक अवसर है, जहाँ तक अथाह शक्ति है हमारी। और बेस्ट लव स्वास्थ्य प्रोग्राम में श्रीमती जो है विसुंदेई बलदेव पूरन की तरफ से सभी बच्चों के लिए, सभी केंद्र क्लाइन केंद्र के लिए गीता खिसला की सरिता और उनकी क्लाइन केंद्र अख्तर क्लाइन केंद्र भी हो चुकी है ये माता श्री को, तो उनको भी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम में श्रीमती विसुंदेई बलदेव पूरन की तरफ से अपने सभी बच्चों के लिए बहुत ही प्यार के साथ आशीर्वाद ये दे रही है। और क्या दे सकती है माता श्री इसे बढ़कर,

0: बलदेव पूरन की तरफ से अपने प्यारे बच्चों के लिए आशीर्वाद दे रही है।
1: अरे इस घर
0: ये माता श्री ये देवी
1: है, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
0: माँ तो भी लक्ष्मी के रूप होते हैं ना।

0: जबकि इस नंबर पे फरमाइश आई सुनाम के रहने वाली है हमारी माता श्री श्रीमती बिशुन देवी बलदेव पूरन। दोस्तों आज के कार्यक्रम में उनकी सभी लड़के जो है जैसे कि शोभा रामोन देव और संजय भाई सभी बेटी खास करके युवती खिसला गीता शरीता और सभी केंद्र और क्लाइन केंद्र को बहुत से बधाइयाँ शुभकामनाएं यूं ही देती है और आशीर्वाद दे रही हैं खुश है और साथ में हमारी खास करके उनके सुपुत्र बेटा भैया देव पूरन जी उनके पास उपस्थित है और उनकी सेवा सत्कार जहाँ तक हो सके करता हूँ। उनकी फर्स्ट प्लेक्ट जो है दूसरे प्लेक्ट एक सुपुत्र के बेटा या बेटी को होता है बेटा के और जल्दी और जास्ती हमारी दोस्तों जैसे आपको मालूम है माता पिता की सेवा ही करना चाहिए ना। तो यहाँ तक बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अभी भैया देव खास करके जो आपने गुजारिश किए हो और विनती की हो तो जरूर मैं आपके लिए प्रस्तुत करेंगे इस नंबर के बाद में।
1: ये दुनिया बना
0: भैया चांद रघुनाथ जी
1: फिर चलाना बस
0: करीम क्रम सुधे हो ये महेंद्र कपूर जी की आवाज।

0: चश्मे
1: वाह वाह, जब हुस्न के बात हुआ तो हुस्न की मलिका जो है हमारी प्रोग्राम है दोस्तों, आप ही के नाम से ये तो सब कुछ चलता ही ना है, और यूं ही और जो है
2: U luistert naar Hindustani Radio,
3: Radio Faham.
4: Digitaal radio, internet van vanfm.nl.
1: Tot nog eens keertje, dank u wel. Irene, Raam Klauwen, Aura Roosje. Unki Pati Johai. सब मिलकर कार्यक्रम साथ रहे भैया चार रुकनाथ भी आपके नाम जो है नगमा अवश्य हम चलाएंगे। ये दुनिया जो है हमारी दोस्तों पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। हाँ, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है इन सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। या कुछ शायरी अच्छा लगता है, आप जो हौसला देते हो। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखे तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। तो अजनबी जी प्रोग्राम में सुन रहे हो,

0: ये वक्त समय जो है, वक्त अच्छा बुरा हर किसी की आता है, मगर और जिंदगी में ये वक्त पल आता है ना, घड़िया जो है अच्छा बुरा वक्त कहते हैं लोग। बुरा वक्त आना भी अच्छा बात है, कौन अपना है कौन पराया है मालूम हो जाता है यही वक्त आने पर ना दोस्तों। और हमारी बेस्ट लव स्टार से कार्यक्रम फाहुन के आप सुन रहे भैया चांद रघुनाथ, कितने वक्त से इंतज़ार कर रहे, यूँ ही किसी की याद में रोनाना जो फिजूल है भैया जो है चांद रघुनाथ जी, यूँ ही किसी के याद में रोना फिजूल है, इतने अनमोल आंसू जो है खास करके बहाना फिजूल है। भैया रजेश बदलू उपस्थित हो चला है आज ये प्रोग्राम है और अभी प्रोग्राम सुनेंगे। रोना तो उनके लिए जो हम पे निजार है, और उनके लिए क्यों रोना जिनके आशिक हजार है दोस्तों, यही हमारे भैया रजेश के कहना है। और अभी प्रोग्राम जो है खास करके चांद रघुनाथ जी और कार्यक्रम में साथ देता रहे, खास करके उनके नाम रजेश जी आ गए हो एक दो और लोगों की खुई मेदा कह दो ना एक एकदम माइक शानदार खातु खान आशी बिलीफ खातु खान और अपनी लोस्तरा की जो है लोस्तरा भैया रजेश।
1: Oh yeah, beste luisteraars, van harte welkom in de uitzending. Ik ben ook net aangekomen en de heer Schaampoeren die overvalt me even. Maar blijft u zeker luisteren om 4 uur.
0: Al die luisteraars, aapke jo hai fans, bahut bechaini se aapke.
1: Het is mooi weer en ja, ik hou het tot 4 uur. Even voor jou.
0: Dank u wel. Want ik heb straks Rolly Mohan tussen 2 en 3.
1: Zeker, zeker. Ja. Dus doe het en we zien om 4 uur hoe we het gaan voortzetten.
0: Goed, dank u wel. Dank u wel, meneer Rijs. En welkom in de uitzending straks. Beste luisteraars, je hebt mijn collega, jo hai, khas karke Rajesh Badluji, aur yahan upasthit ho chala hai, unke program jo hai elke saterdag, aur 4 baje ke baad mein prastut karte hain, to aaj wahi waqt hai, wahi pal hai, ye khushi ke din hai, pal hai dosto, saath mein milke bitate hum, aur jahan bhaiya chand Raghunath ji bahut bechaini se ye program sunna chahta hai, apni nagma jo hai ek number ko mang kar baithe, ek duet hai aapke naam bhaiya jo hai चांद रघुनाथ जी आपके धर्म पत्नी जो है इस भी प्रोग्राम सुन रहे मेरे तरफ से, और एक शुभ दिन मोयदा आप लोगों के लिए, ये दिल जिंदगी में पल घड़ी जो है आपस में प्यार में मिलकर हंसी खुशी में और ईद नीन मुतखर हुसैन यही हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन चाहते तो यही हम लोग के वैसे यही होता है।

0: या दोस्तों, और हमारी बेस्ट मैंस कार्यक्रम में ये खास नमूना और भैया जो है चांद रघुनाथ हुडपना आपके लिए उनकी धर्म पत्नी भी प्रोग्राम सुन रही है खीस जी, इन दोनों के नाम और बहुत ही प्यार के साथ मैंने प्रस्तुत किए। दोस्तों आगे में कुछ संगीत जो हम आपके लिए चला रहे हैं तो चलाएंगे जरूर न
1: आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के,
0: कुछ प्यार भरे नगमे, कुछ दर्द भरे नगमे, पुराना नए सभी शेर शायरी गीत गजल, इसी से हम अपने संगीत को सजाते हैं, अपने प्रोग्राम बनाते हैं।
1: पर

या बेस्ट और सुनने वाले रिनिया जी भी साथ दे रही हैं, रोहतनाम के निवासी है चंद्रा डंकेवाल फोसी चंद्रा जी, काफ़ी दिनों के बाद ने। और रिनिया जी, जाने दुनिया में ऐसा क्यों होता है जो सबको खुशी दे वही क्यों रोता है, उम्र भर जो साथ ना दे सके वही जिंदगी का पहला प्यार क्यों होता है। रिनिया बतलाइए आप, मुझे मालूम नहीं, ये सुनना जो आप चाहती थी तो मैंने आपके सुना, चले और क्या मैं कहूँ, ये सुबक्त ये पल ये घड़ी आपके साथ जो है, हर कोई जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो।

0: यही तो इसीलिए कहता हूँ कि इज्जत और मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं है। इज्जत और मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर कभी दोनों में अगर कभी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत और हर बार इज्जत। हमारी और दोस्तों, कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी ज़रूरी नहीं होते जितना हम समझते हैं। ले तो दोस्तों आप जो है यूं ही कहता हूँ कि कभी कभी हम किसी के लिए इतने भी ज़रूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। हमारी प्रिय और बेस्ट लिस्टरर फाहुन हिंदुस्तानी स्टेशन जो है तारक नंबर 0 7 3 2 7 2 7 7 7। जरा से और सुन लेते हैं।
1: जीवन में ऐसे पांच व्यक्ति हैं तो यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सच बोलता हो, चाहे सच कितना ही दर्दनाक और कड़वा क्यों ना हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो आपसे नहीं बल्कि आपके लिए दुनिया से लड़ जाए। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो आपके सारे सीक्रेट्स जानता है और केवल अपने तक रखता है। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो सीरियस लाइफ में फन को बरकरार रखने में आपकी सहायता करता है। और पांचवा, एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे तब प्यार करे जब खुद अपने आप से प्यार करना मुश्किल हो जाता है। दूसरों में इन क्वालिटीज को ढूंढने से ज्यादा खुद में इन क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश करें।
0: वाह वाह, हमारी दोस्तों हाउडे प्रोग्राम है, आप ही के लिए मैंने प्रस्तुत किया। आप सुने इसे जरूर और अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ और खास करके परिवर्तन हो सकता है।

हाँ भैया, हाँ तो विजयंती जी, यही तो है।

0: वाह रे वाह, वाह रे वाह द्रौपदी जी।
1: कहते हैं जब जीवन में एक दरवाजा बंद होता है तो एक खिड़की खुल जाती है। जब आसमान से सूरज हट जाता है तो चंद्रमा अपनी रोशनी देता है। तूफान आता है तो अपने साथ बारिश भी लाता है। इसलिए चाहे जो हो जाए कभी हताश मत होना, क्योंकि आपका अगला कदम आपको कितनी दूर ले जा सकता है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए परिस्थितियों से डरे बिना और परेशानियों से घिरे बिना केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए।

वाह कलाकार जो है, और खास करके आप ही के नाम ये प्रस्तुत मैंने किए, और मैं अभी तक आपके साथ शाम पूरन हूँ हमारी मित्रों।

0: बीता सुनो ये कहा।
1: पता है आजकल सोशल मीडिया के चलते सभी लोग जज बन गए हैं। इसके वीडियो को लाइक करो, उसके वीडियो को डिसलाइक करो और जो मन में आए वैसा कमेंट लिख दो। प्रशंसा तो बहुत कम ही देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स ने कितने लोगों को मानसिक बीमारी का शिकार बनाया है। तो ये हर पल हर लोगों को जज करने की बीमारी का उपाय क्या है? उपाय है हम लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ाएं। एक दिन स्टेशन पर एक भिखारी एक व्यक्ति के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता है। वो व्यक्ति अपने दोस्त से उस भिखारी की बुराई करने लगता है कि देखो उसके कपड़े कैसे हैं, देखो उसके शरीर से कितनी बदबू आ रही है, देखो ये देखो वो। इतने में ट्रेन आ जाती है और दोनों चले जाते हैं। उस भिखारी को जज करने में इतना समय लगा दिया कि मदद करने का समय ही नहीं बचा। एक कहावत है, इफ यू कीप जजिंग पीपल यू वोंट हैव द टाइम टू लव देम। यानी अगर आप लोगों को जज करते रहेंगे तो आपके पास उनको प्रेम करने का समय ही नहीं बचेगा।
0: तो इसी तरह से जरा से झूमो नाचो गाओ खुशियां मनाओ ना, और हर घड़ी जिंदगी की हर पल खुशी में बिताओ।
2: बाबा बाबा बाबा बाबा इस दीवाने दिल ने क्या

0: मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तुम पे।
1: वाह रे वाह कलाकार, तारीफ।

इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपनी निगाहों से ना देख खुद को, अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते होंगे चांद का टुकड़ा है तू, और मेरी नजर से देख, मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा।

कहना मेरा इसलिए तो है आपसे कि तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, थक जाए सारे वकील, मुझे जमानत न मिले। वाह वाह दोस्तों, और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन, हिट स्टेशन, द म्यूजिक स्टेशन।

0: और यानी जी दंकुआल नो खुश के फिर से आपको एक बार और धन्यवाद देते हुए।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी

ये बतलाता चलू दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तो मुझे और मैं तुझे इंसान देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फैमिलियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां दोस्तों, या गलत फैमिलियों ने ये किया है, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, यही मैं सोच रहा हूँ। ये ऐसा बात नहीं है ना।

जबकि प्रोग्राम आशा पूरन भी सुन रहे, यानी राम खिलावन कार्यक्रम सुन रहे, इरान भी प्रोग्राम सुन रहे दोस्तों। और इन लोगों जो इतला करते हैं डंक वेल फॉर अटेंसी ब्लेफिक में आते चेक दोस्तों। और इंतजार की खड़िया जो जिंदगी जो है, टूट गया दिल अरमान वही है, दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है, जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे फिर भी इन आंखों में इंतजार। हाँ दोस्तों, यूं ही कहते चलते हैं ना हम, वही है। और शेर शायरी के साथ कार्यक्रम ये जो चल रहा है, आप साथ दे रहे हो, वो आपको धन्यवाद। और जो है गायत्री जी, यू पहाड़ते बदंगते फॉर यू अटेंसी।

आवाज जिंदा है, कल गुजर जाएगी, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना होना हमारी शरारतों से, है खास करके यो वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे ना। कहते हैं हमारी तारक नंबर 0 तक, 3 सोईफन तक, और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन जहाँ पर आप सुनो

कहना मेरा यही है, आप ही से कहता हूँ खास जो है, और ईमान सौंदर बखेरत इस द रेक्स्ट पर्सोन, और यूं ही हमारी सिद्धांत यही सोच रहा हूँ कि पॉजिटिव लाइफ ऑप्टिमिस्टिस खास करके रह कर दोस्तों, कि किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि अगला इंसान अपनी तकलीफ का इजहार रो कर करे। अगर उस इंसान ने रब पर छोड़ दिया ना, अगर उस इंसान ने रब पर छोड़ दिया ना, तो वो रब एक एक आंसू का हिसाब लेगा, क्योंकि वो जात इंसाफ करने वाली है दोस्तों। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

इसका मतलब है आप उनसे काफ़ी ऊंचे हैं दोस्तों, ये जानते रहना। ये जिंदगी में सबक जो मिलता है ना, और जो गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं ताकत पर, ताकत अपने लफ्जों में डालो, अल्फाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, सैलाब से नहीं दोस्तों। हाँ हाँ, यकीन करते हैं ना। खास करके जो प्रोग्राम आप सुन रहे हो, तो आपके कार्यक्रम में ये संगीत जो मैंने आपके लिए यहाँ पर चुन रखा हूँ इस मौसम में,

हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश की आवाज में ये खास और सिलेक्शन आप श्रवण किए हमारी प्रिय मित्रों। शराफत उतनी ही दिखाओ जितनी आपकी शक्ल पे अच्छी लगे दोस्तों, शराफत उतनी ही दिखाओ जितनी आपकी शक्ल पे अच्छी लगे, इतनी अच्छी ना बनो, इतनी अच्छी ना बनो कि असलियत सभी को पता हो। दोस्तों ये खास जो है घमंड जो लोग करते हैं, गुरूर करते हैं, बकवास सुनकर भी सख्त कर जाती है दोस्तों, बकवास सुनकर भी सब्र कर जाती हूँ। वो समझते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, यही हमेशा खास करके अपने बारे में जो मैं कहता हूँ, बकवास लोगों के बकवास सुनकर भी सब्र कर जाती हूँ। वो समझते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, हम मेरी गुरूर के बदले मुझे ये सिखाते हैं। अक्सर कुत्ता काट भी ले तो इसे काटा नहीं जाता दोस्तों, ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाते हैं। और ये खास जो है शेर शायरी करते हुए नगमे जो आपके चला रहे हैं, कुछ दर्द भरी नगमे ना, ये दर्द भरा है, चल के सुनते हैं।

ठाकुर जी, डंक वेल फॉर यू टेलीफोन के, और खास जो है हौसला मुझे मिला है आप लोगों से, और इसी कारण प्रोग्राम चला रहे हैं, आपके खुश करे, खुश रखे, क्यों खास करके संगीत है, रेडियो है, तारक नंबर चौबीस तक दरी तभी तक ट्वेंटक स्वीफन स्वीफन तक हमारी दोस्तों। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं दोस्तों, बतलाता चलूँ आपसे ना, मेरे जिंदगी जो है अपनी बात मैं करता हूँ, बात जो करते हुए बुराई ढूंढने का शौक है आपको, बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। दोस्तों ये बातें चीत होते रहते हैं जबकि कहावते कहते हुए, और जो है मेरा ये आदत सी पड़ गई है जितना प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूँ ऐसे है ना, खास करके लोग कीचड़ से बच कर चलते हैं, लोग कीचड़ से बच कर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग उसे डरते हैं। हमारी आप आसपास भी कुछ लोग ऐसी गुरूर में रहते हैं दोस्तों, ये बतलाता चलता हूँ मैं खास करके देते मानो फोर बिल की कुछ लोग जो है कीचड़ से बच के चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए, और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग उसे डरते हैं, यही सोच रहे हैं कीचड़, और हमारे आसपास भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं दोस्तों। क्या मैं बतलाऊं आपसे, ये खास जो है

हमारे साथियों यही तो पावन है और कार्यक्रम आप जो सुन रहे हो साथ देने के लिए और इतला करने के लिए से धन्यवाद कहता हूँ। क्या कहूँ मैं हास करके, मैं अपने बारे में जो भी कहता हूँ अपने ही बारे में कहता हूँ। साथ जो आप दे रहे हो खुशी की बात है। दोस्तों हम बुरे थे बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फिकिर तो वो करे, फिक्र तो वो करे जो बोलते हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है दिखाते कुछ है और होते कुछ होते हैं। दोस्तों ये सोच रहा हूँ मैं, एक बार फिर से कहता हूँ हम बुरे थे बुरे हैं बुरे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ है करते कुछ है दिखाते कुछ है और होते कुछ और है। दोस्तों ये पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, आप हो और मैं हूँ।

0: नहीं।
1: ये जिंदगी है हमारे यारों, और खास करके जो है कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने जिंदगी को देखा है करीब से, मैंने जिंदगी को देखा है करीब से, बहुत करीब से। मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता आंसुओं के सिवा। हाँ दोस्तों और हमारी साथियों, दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, दिल को दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है ना। किसी के साथ दूर तक जाकर तो देखो, अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है।

तो ये पल जिंदगी के घड़ी जो बीत जाता है दोस्तों, तो फिर से कभी नहीं लौट के आएगा। जो कल करना था आज करो, जो आज करना है अभी कर डालो दोस्तों, और मत इंतज़ार करो वो आखिरी पल के, कब आखिरी पल आएगा दोस्तों, और कब क्यों और कैसे, कब कैसे और क्यों हम कभी नहीं जान पाएंगे।

यूं ही आपसे ये कह दूं और मैं कहना भी चाहता हूं कि सादगी तो देखो उन नजरों की, हमसे बिछड़ने की कोशिश में बार बार बार बार हमें ही देखती है दोस्तों, क्या बताएं मैं आपसे।

पाहुन ने 24 घंटे लगातार रेडियो जो है और तार के नंबर 9 अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपके साथ हूँ हमारी और दोस्तों।

इसीलिए आप ही से कहता हूं कि सुन लो, जरा से गौर से सुन लो, हमसे अगर गिला हो तो माफ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ करना, दिल से तो तुमको भुलाएंगे नहीं, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ करना। यही और कहते हुए प्रोग्राम है आप ही के स्टेशन, हिट स्टेशन पावन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन है, और मैं आपका सेवक अभी तक तो शाम पूरन हूँ। हमारी दोस्तों, मैं आपका सेवक शाम पूरन अभी हूँ आपके साथ, यही सोच रहा हूँ जिन विचारधारा से दिन अंदाज में ये प्रोग्राम हम आपके लिए, मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको पसंद आता हुआ होगा। कोई गलतियां हो जाए ये जानते रहना, माफ चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ दोस्तों, इंसान हूँ ना, और भगवान जो है उनसे कोई गलती नहीं होता है। भगवान से जो मांगना है मांगो, दिल खोल कर मांगो, वो आपको देगा, उनकी भंडार भरा हुआ है हमारे साथियों, जानते रहना। यूं ही आपको याद दिलाते हुए

साथियों, हमारी दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो जहां पर आप ट्यून हैं, चली रे मुहा चिकनी।

कुंठ हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जाने मन तुम कमाल करते हो, फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हम पेश करते हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं

फन होम्स हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ऐ यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गादीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूमके, रात के जुल्फे झूमके, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं दमयंती मुकेश जी की आवाज में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

नमाइती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफर है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटें भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाहे खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। फ्रॉम द मूवी दुनिया ना माने, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हम चल रहे थे वो चल रहे थे मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे, दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, फ्रॉम द मूवी दुनिया ना माने। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, फ्रॉम द मूवी हम राही से हम पेश करते हैं ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी हमराहे से हमने पेश किए हैं ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। एक थी रीता है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं। नुमाइती मुकेश के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

द माइटी मुकेश जी के साथ में द नाइटिंगेल लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं फ्रॉम द मूवी एक थी रीता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता फ्रॉम द मूवी आप आए बाहर आए। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, फ्रॉम द मूवी आप आए बहार आई, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। यकीन खाली दिल को भी भर देता है, यकीन खाली दिल को भी भर देता है और बेयकीनी भरे दिल को भी खाली कर देता है।

लता जी के आवाज़ में भी आप सुन रहे थे हम थे जिनके सहारे। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम।

अभी आप सुन रहे थे बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, आ गए पास हम। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद ना कर। चुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, दो रास्ते हैं फिल्म का नाम। चलिए मिलकर सुनते हैं लता जी के साथ में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

गए सारे नज़ारे और क्या बात हो गई। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से हमने पेश किए हैं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। सुनने वालों, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ख़ास करके सभी सुनने वालों के लिए। हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हम ज़्यादा मिल भी नहीं पाते। हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, हम ज़्यादा मिल भी नहीं पाते, इसलिए हम आपका ख्याल नहीं रख सकते। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम अपना ख्याल रखा करो, बिकॉज तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। एक फूल दो माली है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये पर्दा हटा दो जरा, मुंह खड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं।

ये सुन रहे थे ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली से हमने पेश किए हैं। अगर कोई तुम्हारा साथ अच्छा है तो तुम भी उसके साथ अच्छा बनो, अगर कोई तुम्हारा साथ अच्छा है तो तुम भी उसके साथ अच्छा बनो, अगर कोई तुम्हारा साथ बुरा है तो उसके लिए तुम बुरे ना बनो, क्योंकि पानी से खून साफ किया जा सकता है मगर खून से पानी नहीं।

मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे दिल ने दिल से न जाने क्या कहा हो तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे फ्रॉम द मूवी रखवाला से हमने पेश किए हैं। कब क्यों और कहाँ है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल आप सभी के वास्ते।

फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं लता जी की आवाज में द टाइटल। हेलो, विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते नमाइदी मुकेश जी की आवाज में आप सुनेंगे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दिया। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी विश्वास से द माइटी मुकेश जी की आवाज में सुनने वालों, जरा साहब देखे। जी हाँ, फिल्म का नाम है सारंगा और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं द टाइटल, हाँ दीवाना हूँ मैं।

अभी आप सुन रहे थे हाँ दीवाना हूँ मैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, फ्रॉम द मूवी राम और श्याम से आप सुनेंगे।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, फ्रॉम द मूवी राम और श्याम से हमने पेश किए हैं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी कन्यादान से आप सुनेंगे।

0: voor dunnere en zachtere nieuwe.
1: सुनने वालों, कोई और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आप सुनेंगे, मैं हूँ साखी तू है शराबी शराबी।

प्रोग्राम को सुन रही है, वैसे तो कई है लेकिन उन में से एक है गीता महावीर जी। तो गीता महावीर जी के वास्ते ये सुंदर सा सॉन्ग हम चलाते हैं, आप इस यानी आपके वास्ते, फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से आप सुनेंगे।

तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, और ये गीत खास करके हमने पेश किए हैं गीता महावीर जी के वास्ते जो ये प्रोग्राम को सुन रही है।

आंखों में कयामत के काजल, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा, द टाइटल फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करें। उषा खन्ना के साथ में महेंद्र कपूर जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी आओ प्यार करे अभी आप सुन रहे थे। रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम।

0: Wist je dat banken jou...
1: हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए भी आप सुन रहे थे गीत तेरे सांस का तेरी ही आवाज हूँ लता जी आपको सुनाने वाले हैं

फ्रॉम द मूवी इंतकाम से भी आप सुन रहे थे गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी कठपुतली से आप सुनेंगे जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया।

हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगी तुम तो ना रोएगी दुनिया। किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी कठपुतली से हमने पेश किए हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। फ्रॉम द मूवी पिया का घर से आप सुनेंगे।

इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। पिया का घर है फिल्म का नाम, किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर, यानी ये रात फिर नहीं आएगी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, नर्तक ये है फिल्म का नाम, आशा भोसले जी के साथ में। सरासा हम देखे, जी हाँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नर्कती यानी नर्तकी से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। द माइटी मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। गीत गाता चल आप सुनेंगे।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी गीत गाता चल से भी आप सुन रहे थे, आपको सुनाने वाले थे जसपाल सिंह। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन, लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी गाइड से अभी आप सुन रहे थे, लता जी के साथ में किशोर दा आपको मिलकर सुनाने वाले थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। मुकेश जी आ रहे हैं प्रोग्राम में ओ मेरे हमराही।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ओ मेरे हमराहे क्यों तेरा मन घबराए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, फ्रॉम द मूवी वक्त से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आशा भोसले जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मोहम्मद रफी जी और लता जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के। लता जी और मोहम्मद रफी जी आपको क्या सुनाएंगे, बेखुरी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

आप सुन रहे थे बेखुदी में सुनम, उठ गए जो कदम आ गए पास हम, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। और आपको सुनाने वाले थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी। फ्रॉम द मूवी दुनिया से हम पेश करते हैं सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बैजू भौरा।

अभी आप सुन रहे थे बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बैजू भौरा से, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। लता जी फ्रॉम द मूवी अनारी से।

लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे तेरा जाना, फ्रॉम द मूवी अनारी से हमने पेश किए हैं मेहताब तेरा चेहरा। द माइटी मुकेश और लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

आशिक है फिल्म का नाम। लता जी के साथ मेरा माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। देखो देखो जी, सोचो जी, कुछ समझो जी, लता जी की आवाज़ में चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में झूमता मौसम मस्त महीना मन्ना दी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे झूमता मौसम मस्त महीना, लता जी के साथ में मन्ना दे जी आपको भी सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी उजाला से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं मेरे देश में पवन चले पूर्वाई।

मेरे देश में पवन चले पूर्वाई मोहम्मद रफी जी भी आपको सुनाने वाले थे। रमैया वस्तावैया लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी श्री 420।